0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand. हर रोज
1: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100
2: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स दिस इज अबाउट हाउ यू मूव दिस कार मेक्स नो सेंस येट इट मेक्स एवरी सेंस व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी Your friend said, ye le

0: Well, India wrapped up 2026 Asian Games with a strong medal haul, finishing fourth overall. India ended the campaign with as many as 85 medals, including 21 gold, 27 silver, and as many as 37 bronze. India's gold rush came across 9 sports, with archery leading the tally with as many as 5 medals, followed by shooting and boxing with 3 each. Cricket, kabaddi, hockey, and wrestling contributed 2 goals each, while athletics and golf added 1 piece. Now, from shooting range to the archery arena, the kabaddi court, the hockey field, and even the athletics track, India produced gold-winning performances across all disciplines. My colleague Rika Roy reports on this. Take a look.
1: हमें ये बताइए दोबारा दो दो दो लगातार बैक टू बैक मेडल जीतना डिफेंड करना कितनी बड़ी बात है एशियन खासकर एशियन गेम्स के मेडल
2: आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और बैक टू बैक जीतना एक हमेशा एक अच्छा रहता है खुशी रहती है कि आपने काफ़ी अच्छा जो दबदबा है बना के रखा हुआ है यहाँ पे एशियन गेम्स में और एक्चुअली क्या था इससे क्या होता है सभी को पता है कि एशियन गेम्स से जब आप जीतते हो गोल्ड मेडल जीतते हो तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई करते हो ओलंपिक्स के लिए और हम लोगों ने अभी डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया एलए के लिए तो वो एक हमारे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है अभी और क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है कि हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप के ऊपर और ज़्यादा काम कर सकते हैं अभी हमें क्वालिफाई का स्ट्रेस नहीं रहेगा तो कि हाँ कि हमें क्वालिफाई राउंड का वरीड नहीं है वो हमें तो अभी अपने फिटनेस के ऊपर और चीज़ें जो हैं कि कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को कि जो एलए में जाएं तो ऐसी कोई चीज़ें ना रही हों कि जहाँ पे हम लोगों ने काम ना किया हो
1: दो तीन चीज़ें मुझे बताएंगे yeah. जो कि आप डिफेंड करना चाहेंगे एज यू प्रोग्रेस टूवर्ड्स एलए
2: कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग अपने डिफेंस के ऊपर और ज़्यादा काम करना चाहेंगे कि हाँ कि हम लोग और अपना कैसा डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि अगर आप डिफेंड अच्छा करते हो तो आप टूर्नामेंट्स जीत सकते हो ठीक है तो यही है कोच का भी यही मंत्र है कि अगर आप डिफेंड टू विन कि अगर आप डिफेंड अच्छा करोगे तो आप किसी भी टीम को बीट कर सकते हो तो क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छे स्ट्राइकर्स हैं कि वो कभी भी गोल कर सकते हैं बट अगर हमें पीछे डिफेंस हमें स्ट्रॉन्ग रखना होगा तो उसके ऊपर है और चीज़ें रहेंगी अभी आने वाले टाइम में देखा जाएगा और क्योंकि हर टीम कुछ ना कुछ चेंज करेगी तो उसको कितनी जल्दी हम लोग अडॉप्ट करते हैं और उसको कैसे हम लोग उसका तोड़ निकालेंगे है ना तो वो इम्पोर्टेंट काफ़ी रहेगा हमारे लिए
1: आपको लगता है पाकिस्तान को सेमीफाइनल में खेलना एक एडवांटेज रहा इंडिया के लिए मतलब एक तरफ से पहले खेल लिया तो प्रेशर नहीं है फाइनल में किसी को भी किसी से भी भीड़ लेंगे
2: एक्चुअली ऐसा होता है मैम जब आप ऐसे बड़े इवेंट्स पे आप खेलते हो एशियन गेम्स या कोई वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स होते हैं तो आप किसी भी टीम को कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं और पाकिस्तान अच्छी टीम है मलेशिया भी अच्छी टीम है और कई बार ऐसा होता है कि ये सेमीफाइनल फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट मैच होते हैं दोनों टीमों के लिए और जिस दिन कोई भी टीम उस दिन अच्छा खेलेगी तो वो अपर हैंड रहती है तो हमारा ये था कि हम लोगों ने सेमीफाइनल अच्छा खेला हम लोगों ने पहले हाफ में अपना जो गेम था वो खेला हम लोगों ने तीन एक से ऊपर चल रहे थे दूसरे हाफ में कहीं ना कहीं हम लोगों ने थोड़ा सा एरर किए अपनी गलतियों से है ना कि हम लोग थोड़ा डिफेंसिव कि जहाँ पे हम लोगों ने उनको इजी गोल दे दिए बट अदरवाइज अगर हम लोग उस दिन भी अपना डिफेंस अच्छा स्ट्रांग रखते तो हम लोग उनको भी बीट कर सकते थे
3: well, 2026 was we've just been topped off nicely now the world cup was tough for us and I think we had high aspirations of doing well but now within 3 weeks we had to come and perform and I think we did that immeasurably super proud of the guys it's not easy to do that and we did it and also the way we came through the semi-final against Pakistan we played a great first half they played a great second half and in the last 40 seconds we found a way to win and it was exactly what we needed to play this final
1: I'll ask you about the Pakistan match because you know it seemed crucial that we played Pakistan in the semi-final and not in the final do you think that way
3: no why not I'd love to have played them in the final you know you can never choose you just never know how the cookie crumbles but it fell in the semi-final we had a good game plan and we were better off for it like I said we really just had to be honest with ourselves and at the same time the guys responded well they knew we can play better and we did and tonight's proof
1: what are the areas you would like to tighten from now on as we head to the LA Olympic Games
3: we just got to keep playing the best teams in the world and prepare for that and do a good job of knowing where we are needing a gap and filling the gap at the same time we've got some younger players that need experience so our goalkeepers did well in this tournament we've obviously got a big squad and now the competition is wide open
1: Hardik sabse pehle to bahut bahut badhai ho aur aap shuru karo aapke goal ke moment se talk to us us moment mein kya chal raha tha inside the ground kya conversations chal rahi thi
4: us time pe mam stroke ke time mein yahi tha ki हरमन के साथ बात हो रही थी, देन ही सेड दैट इफ यू वांट टू गो गो, एंड आई सेड ओके कूल है ना. तो उसके बाद मैं वहाँ गया, एंड देन उस मोमेंट में यही था कि आई हैव डन सो मेनी टाइम्स इन माई ट्रेनिंग एंड देन आई हैव टू डू ओनली वंस इन द मैच. तो वही मेरे माइंड में था, एंड देन कूल काम ओके एंड आई जस्ट नीड टू एग्जीक्यूट इट, वही माइंड में था. एंड मैच की बात करें तो ये टीम एक ऐसी थी, वी न्यू दैट दे कैन कम बैक एट एनी टाइम. सेमीफाइनल में जैसा हो रहा था, एंड वी नीड टू कीप स्कोरिंग स्कोरिंग स्कोरिंग, सो दैट्स वॉट वॉज इन आवर माइंड. एंड देन हमारी जो डिफेंस थी, आई थिंक दे डन अ ग्रेट जॉब
1: पूरे टूर्नामेंट में
4: फॉर श्योर. आई थिंक कि सॉफ्ट गोल हमारे हुए हैं कि दैट्स रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर अस, बट इट्स अ नाइस थिंग दैट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर फिक्सेबल, सो वी नो दैट.
1: आपको लगता है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल में खेलना इंडियन टीम के लिए एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था, वो मतलब बला टली?
4: हमारे को ये पता था कि कहीं ना कहीं तो इनके साथ मैच आएगा, और उन्होंने इम्प्रूवमेंट अपनी काफ़ी अच्छी की है इंटरनेशनल हॉकी में, सो वी रिस्पेक्ट दैट. एंड देन वी नो कि इट्स गोइंग टू बी मोर देन अ मैच, एंड देन वी नीड टू बी वेरी काम, एंड देन वी नीड टू बी फोकस ऑन द मैच नॉट द ओकेजन. जो ही हमारा वही हमारा एक टास्क था, एंड देन आई थिंक द बॉयज़ हैव डन इट वेल.
1: एले ओलंपिक का क्वालिफिकेशन हो गया है, इसके साथ साथ तो आगे का पड़ाव क्या है? हाउ डू यू प्लान टू मेक थिंग्स डिफरेंट?
4: आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रिलीफ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि LA 28, एंड देन वी नो दैट कि कहाँ पे देर आर सो मेनी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट दैट वी नीड टू डू, एंड वी हैव सीन इन द वर्ल्ड कप ऑल्सो. एंड देन वी नो कि स्टेप बाय स्टेप वी विल वर्क ऑन इट, बट राइट नाउ वी जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन द पार्टी.
1: With me is Shivam Dubey, the gold medal winner from the Asian Games. Shivam, many, many congratulations. It's a proud moment for all of us to see you on the podium when the national anthem was happening, national flag was going up. What was happening and in the podium? Let's start with the podium moment.
5: So whenever we are at the podium, this is my second time to be at the podium, and I'm very grateful for that. And I feel that when I was standing, the national anthem was going on, I only can hear the voice India. Mm-hmm. So it feels really good for me because the national anthem goes and people knows that India has taken the gold now.
1: How special was it beating Pakistan and getting to the gold medal finish?
5: Probably it's not about Pakistan. For me, it was winning the gold medal. Whoever comes in the final, we wanted to beat them. It was only to win the gold medal and make our country proud.
1: Personally, those runs that you scored towards the end, would you say, and we know that Pakistan came very close, would you hold those runs very high now?
5: It's just a contribution because it's not about my runs, it's about all of the players who have scored. I don't count my runs very high.
1: But it was just a 19 run difference between the two teams.
5: Oh, that's okay, totally fine. You can count the 19 runs of Tilak as well. Tilak has batted amazingly. Abhishek has done something different today. Yeah. Tilak has done. All Jasprit Bumrah, the bowler we wanted, we saw today. So it's not about me, it's just about the team.
1: And what about some catches that were spilled in the middle? Did the team talk about it?
5: No, it's cricket and it happens. You drop some catches, you take some good catches. It's cricket, you can't expect everyone to take everything on the time. Yeah, we try our best to be better, not to make the mistake, but it happens in the match.
1: हमारे साथ है तिलक वर्मा, जिन्होंने अभी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है. तिलक, हमें बताइए कि जब गोल्ड मेडल लेकर आप पोडियम में खड़े थे, व्हाट वाज द फीलिंग?
6: फीलिंग तो बहुत डिफरेंट फीलिंग है जब जैसा हम लोग हमेशा जैसे वर्ल्ड कप जीते कुछ महीने पहले और एशिया कप, वो सब चीज़ भी जीते हैं, मगर ये एशियन गेम्स ना कुछ इसका फीलिंग अलग है. जो गोल्ड मेडल मिलेगा आपको और आपका तिरंगा आप उठा पीछे लाके ऊपर करके जो फ्लाइंग कलर सब अपना ऊपर लेटाते इधर, तो वो सब चीज़ मतलब डिफरेंट फीलिंग जो यूजुअली हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं उससे बहुत डिफरेंट फीलिंग है. मगर मैं लकी हूँ, मैं 2023 में चाइना में जीते थे, अभी यस अभी फिर से सेकेंड टाइम. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर गॉड.
1: व्हाट इज़ इट अबाउट पाकिस्तान एंड तिलक वर्मा?
6: कुछ नहीं, इट्स ऑलवेज मतलब हाई प्रेशर गेम होता है पाकिस्तान, एंड दे हैव ऑल्सो प्लेड रियली वेल टुडे, बट द सेम पॉइंट मैं कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है. यू नो इस गेम में ज़्यादा इमोशंस रहते हैं, तो इफ व्हेन यू आर प्लेइंग इन दैट ग्राउंड, सो मतलब आपको पता रहना है कि इमोशंस आप साइड में रखनी है, जो बचपन से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका स्किल है, उस समय टीम के लिए क्या चाहिए, वो सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा. एट द सेम पॉइंट अगेन किसी और इंसान की तरह रहा है, मुझे भी नर्व्स आते हैं, मगर ऐसा नर्व्स में मैं ऑलरेडी दो बार पहले खेल चुका हूँ, बहुत बार खेल चुका हूँ, मगर पाकिस्तान के साथ हम लोग ऑलरेडी खेल चुके हैं, तो मुझे पता है कि कैसे हैंडल करना है। तो उस मोमेंट में सोच रहा था कि बैक टू बैक विकेट्स गिर गए, तो एक पार्टनरशिप ज़रूरत है टीम के लिए। मैं बात कर रहा था कि 200 के ऊपर रहे तो अपन एक गेम सील किया वैसा हो जाएगा, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग विद शिवम दुबे। तो प्लान में वही था और एंड ऑफ द डे मतलब एग्जीक्यूट करके मैंने टीम कॉज में अच्छा रन, विनिंग कॉज में मैं रन्स लेके आया हूँ, सो आई एम रियली हैप्पी एंड
1: प्राउड। एक आखिरी सवाल, क्रिकेट का मैदान छोड़ के ओलंपिक के मैदान में आपका हीरो कोई है अगर तो बताइए?
6: ऑफकोर्स इंडिया से ही रहेगा और नीरज चोपड़ा।
1: Thank you very much and I hope you meet Neeraj very soon. Thank you.
0: Well, remember that India has wrapped up the 2026 Asian Games with a very strong medal haul, finishing fourth with as many as 85 medals. With that, we're slipping into a short break. See you on the other side with more news and updates. Do stay on with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: रिपोर्ट एंड आई आस्क देम कि आपको इस पे रील बनानी है, लिंक्डइन पोस्ट बनाना है एंड आपके पास 2 घंटे हैं. एंड दे हैड द वर्स्ट टाइम ऑफ देयर मंथ. दे वर लाइक, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम प्रोसीड कैसे करें. एंड दीज आर पीपल हु बीन डूइंग इट फॉर लाइक मल्टीपल ईयर्स विद मी एंड नाउ दे फील हैंडीकैप्ड. सो द क्वेश्चन इज नॉट विल एआई बिकम एज स्मार्ट एज ह्यूमंस. द रियल क्वेश्चन इज कि क्या हम विल वी स्टॉप अपस्किलिंग एंड विल वी गेट डाउन टू द लेवल दैट एआई इज एट राइट नाउ.
1: आपको भी लगता है कि उनके उनके मन में ख्याल आता होगा कि यार वी आर गेटिंग अपस्किल्ड यूजिंग एआई, गायत्री इज प्रोफेसिंग ऑल दीज एजेंट्स टू एवरीवन इन दिस रूम, हमारा जॉब खतरे में
2: है. आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट बिकॉज़ व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से आई एम अ लीडर एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल. राइट, मोस्ट ऑफ आवर मीटिंग्स आर रिकॉर्डेड टुडे, मे बी सम ऑफ दीज कन्वर्सेशंस आर बीइंग रिकॉर्डेड. व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई टेक दिस रिकॉर्डिंग and I probably give it to an AI which already has so much context about me, and I give any other context, documents, ya koi bhi aur cheez jo topic se related hai, the AI can give me a quick output, and I think that output can be refined very quickly by me and sent over, right? Ab main agar kisi apne team member ko ye deti hu, what happens is they will go back, they will do it, I will then review it. I think that time lost is a lot. What I personally feel is, even in my company, I keep telling people that get better at these two things. A, you should have as much context that people would not want you to leave the room. And second, judgment. I think what Ishan also said, right? Ki aaj ke din mein real intelligence is more important. And what is extremely important is if you can be the judge of, you know, what is good and what is bad, I think that makes you want to be in the room and that makes other people to, you know, want you in the room. So I would just say that develop these two skills, which is have like great judgment and have so much depth and context कि कोई आपको बोल ही नहीं सक रहा कि मैं आपके बिना ये कर सकती हूँ.
1: ये रेगुलेशन की जो बात होती है एंड वी कीप टॉकिंग अबाउट दीज न्यू एआई एजेंट्स, आपको नहीं लगता कि ये जब हम सबको बता रहे हैं जेनजी को कि मे बी वी शुड बी यूजिंग दीज एआई एजेंट्स, इसमें जेन्युइनली एक खतरा है बिकॉज देयर इज नो यूनैनिमिटी इन द लीडरशिप ऑफ एआई.
0: मतलब ये दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड, राइट? तो पिछले एक महीने में वीव हैड ग्रॉक रिलीज समथिंग कॉल्ड एज ग्रॉक बॉट. आप लोगों ने सुना है उसके बारे में? ग्रॉक बॉट, इट्स लाइक अ पर्सनल असिस्टेंट जो आपके साथ हमेशा काम करता रहेगा. आप नए बॉट्स बना सकते हो. फिर उसके बाद मेटा ने म्यूज लॉन्च किया, विच वॉज अनदर वर्जन वेरी सिमिलर टू इट, बट नाउ हैविंग अ कनेक्शन विद इंस्टाग्राम एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स दैट मेटा हैज़. देयर आर टू थिंग्स अबाउट इट, राइट? आई वॉज रिसेंटली परचेजिंग अ बेड एंड वो फर्नीचर कंपनी ने बेड ठीक से भेजा नहीं, तो आई हैड म्यूज लिटरली गो देयर एंड गेट माई रिफंड डन. वो ईमेल कर रहा है, वो खूब सारे कॉल्स कर रहा है, सब कुछ मेरे बिहाफ पे कर रहा है.
1: This is a hard flex, huh? सबके पास muse नहीं है, पर ईशान के पास muse है, I'm just saying.
0: And then the other part about it, which is actually kind of scary, is आप में से कितने लोग अपना data share करने के लिए ready हो गए, right? So मैं एक company में था, I was training them, and the first question they had was, ईशान मैं download नहीं कर रहा इसको अपने MacBook पे, because मुझे पता नहीं है कि कितना access ले लेगा मेरे data का, कौन से folders में चला जाएगा इसका access, and then फिर क्या होगा? And then वो दैट इज द थिंग दैट एवरीवन इज स्केयर्ड अबाउट, कि अगर मैं सब कुछ दे दूं एक्सेस तो क्या होगा. एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग सिचुएशंस इन विच इस तरह के पर्सनल एजेंट्स ने फेसबुक मार्केट प्लेस पर जाकर के किसी का एड्रेस शेयर कर दिया किसी और को एंड लो बॉल करके एक नंबर सेट कर दिया एंड एक्सेप्ट कर लिया, एंड वहाँ पे आके लोग खड़े हो गए बाहर उसके एड्रेस पे कि आप मेरे को वो चीज़ दो, एंड पीपल आर लाइक स्केयर्ड अबाउट दैट. एंड दिस इज ऑल हैपनिंग 24/7. आपको पता भी नहीं, आप सो रहे होगे एंड आपके एजेंट्स आपके 24/7 बात कर रहे होंगे. द रियल क्वेश्चन टू आस्क इज हाउ मच ऑफ द डेटा are you okay sharing, and with which company do you think has that responsibility of taking care of that data? So that's the main conversation that we keep having with whoever I talk with.
1: Jab aap jaati hain companies ke paas, jab CEO aapke saath baithte hain boardroom mein, you're trying to tell them ki AI transformation project ka ye ek ahem hissa hai ya ye shuruaat hai, yahan se humko changes shuru karni hai, तो व्हाट आर द इश्यूज यू फेस, आपको क्या दिक्कतें दिखती हैं वहां पे, एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू यू?
2: तो यू नो आयुष, वी गो टू अ लॉट ऑफ कंपनीज, राइट? एंड हमारा काम है कि हम जाके उनको हेल्प करें, व्हिच इज हाउ डू यू यूज एआई, हाउ कैन यू अडॉप्ट एआई, बट लार्जली आरओआई क्या है, इज इट टाइम, इज इट मनी एटसेट्रा. अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यू गाइज ऑल नो, राइट, कि हम कोई भी कंज्यूमर ब्रांड में देखते हैं तो सबके पास सीएमओ होता है. वो सीएमओ का जॉब होता है टू फिगर आउट कि हमारा मार्केटिंग बजट क्या है, हम किस एजेंसी के साथ काम करेंगे. आज कंपनीज के साथ क्या हो रहा है, दे डोंट हैव अ एआई बजट. उनको ये नहीं पता कि एआई में कितना स्पेंड करना चाहिए. उनको ये भी नहीं पता कि इफ ऑल्टर्ड लाइक कंपनीज कम, तो हम किसको लीडर बनाएं, हु विल स्पीक टू ऑल्टर्ड. सो दिस इज बिकमिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि सबको पता है कि एआई हमें

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Right, and the motive is yet to be determined. But when we talk about the opposition that is taking this opportunity to train its guns on the chief minister and the ruling party of Bhagwat Mann over the killing, the Congress is alleging a collapse as far as the law and order situation is concerned. The BJP calls Punjab a crime capital and says the Aam Aadmi government has basically failed.
1: Social media influencer hai hamare yahan ke Mad Sandhu karke. उनकी आज लोहार का रोड पे जो है दो गोली शॉट्स लगने से उनकी अभी 40 में डेथ हुई है. तो इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेजेस पे है. वी हैव क्लूज ऑन वी विल सॉल्व इट वेरी सून. उनके फादर उनकी फैमिली सारी यहाँ पे है. उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हमने FIR दर्ज करके इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन है स्टार्ट कर दी.
2: को कल कल अंदर एक होर इन्फ्लुएंसर संधू नु मार दिता अमृतसर अंदर. एक सरपंच या फॉर्मर सरपंच नु मारता लुधियाने च. पुलिस की करे, पुलिस तो 24 घंटे इन्हों की सुरक्षा च लगी रही है. मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन जिन्होंने कोई चौंक खड़िया पछाणदा ना हैगा, इन्हों सुरक्षा करन ते लगी रही है. ये पंजाब नू बर्बाद करन ते लगे ने दोवें हत्थां दे नाल. पंजाब दे लोग इन्हों माफ नहीं करनगे. अज मैं कहना चाहुंदा है शिक्षा मंत्री जिनी जे अगर इन्नी जी भी गैरत बची आ ते अज उहदे MLA दे एक्सपोज करन दे बाद उहनू खुद रिजाइन देना चाहिए और कहना चाहिए सैमरन सुखबीर नाल जाके खड़े होके कि भरा तू सच दी आवाज बोली, मैं भी तेरे नाल खड़ा है. पर गैरत बची नहीं, ऐसा करनगे नहीं. वैसे मैं तुहानू दस रहा सी ऐसा करना चाहिए.
3: देखिए, आज मैड संधु का अनपछाते लोगों ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया और हैरानगी इस बात की है कि सरकार अभी भी सोई हुई है. लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ है. पंजाब में डर का माहौल है. पंजाब के लोग डर के साये के नीचे सो रहे हैं और यहाँ पे भगवंत मान की सरकार बड़े बड़े होल्डिंग लगा करके कह रही है कि शानदार सरकार, ईमानदार सरकार. अरे ये तो बेईमान सरकार है. लेकिन हैरानगी इस बात की है कि ना केजरीवाल ना भगवंत मान इस पे कुछ बोलते हैं. आज पंजाब के हालात बद से बदतर हैं और लोग डर के साये के नीचे जीवन जी रहे हैं.
4: बहुत दुख की बात है जो मैड संधू के ऊपर भी गोली चली है और लुधियाने में सरपंच भी मारा गया है. और मैं ये लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तार तार हो गया है पंजाब का. और यहाँ तक कि जो क्रांति के शिक्षा क्रांति की बात है उसके भी ऊपर आपके उनके MLA ने कैसे सवाल उठाए हैं. सो ये कुल मिलाकर जो आम आदमी पार्टी है ये सिर्फ प्रदेश से को दो हाथ से लूटने के लिए आए थे. इनका जो वेल्थ है आम आदमी पार्टी का, देखो इनके लोगों का कितना कितना बढ़ चुका है जब से ये यहाँ है. और पंजाब कर्जे में डुबो दिया है. और लॉ एंड ऑर्डर मतलब आप कोई आदमी सेफ नहीं है, कोई बिजनेसमैन सेफ नहीं है. छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बड़े लोगों तक सबको थ्रेट कॉल आ रही है और पैसे इठे जा रहे हैं और उनसे जो फरौती ली जा रही है वो शरेआम यहीं के लोग हैं जो बैग भर भर के ले जा रहे हैं लोगों से. और क्या पुलिस को नहीं पता? क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता?
0: Well, let's get you the latest as far as Captain Smith, who has now revealed the chilling details that have come about. These are new details of the moments inside the Fly Dubai cockpit. A prayer in the cockpit, then a sudden attack. The captain, in fact, says that he looked away before a blow left him stunned. It's at the time when the co-pilot, Al Hamami, had said that he wanted to pray, which is why Captain Smith had looked away, thinking that, you know, he needs some time, needs privacy. But that's the time when, you know, after he finished his prayer, started to attack his co-pilot, Captain Smith. Thinking that the plane had been hit, he faced a barrage of blows and his vision was blurred as the aircraft plunged. Yet, Smith fought back and forced open the cockpit door. Do remember that he was trying to open it at first and, he was finding it very difficult. He managed to open it. It was shut again and so on and so forth. What really happened in those matter of 5 minutes? Let's get you all the details we know.
5: It was a normal flight. The co-pilot, Hamam Al Hamami, said he wanted to pray. Captain Smith Marshall looked away out of respect. Over. 4 minutes passed, then came the first blow. Smith was struck from behind. His first thought, catastrophic damage. Something had gone terribly wrong with the aircraft. Then came another blow and another. And that's when he realized it wasn't the aircraft. It was the man sitting beside him.
6: It just

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
6: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: Remember that he was present in Ludhiana. He was near the Ladoowal bypass and was in the South City area, which is when the attack occurred. Two bike-borne assailants opened fire and they opened as many as 13 rounds of fire on him. He was then taken to the DMC hospital and he was brought dead on arrival. His family was alerted, and what we are learning from the victim's family is the fact that, you know, the family alleges that, you know, his brother, the victim's son, has said that his uncle is behind this. There was a family dispute that is said to have been the motive behind the attack. Of course, police has registered an FIR in the case under the relevant sections of the BNS, and the investigation is also taking shape. The important part is that we've also accessed exclusive footage of the dash cam, which shows the attack occurring, and you can even hear the victim saying that, you know, the assailants have shot at me. This, of course, is now in context of a larger argument that the opposition is making in Punjab with regards to law and order. They're already mounting attack on the Bhagwant Mann government, saying that the government is not doing much to curb law and order, because this is a case that has occurred. And apart from this, remember that a social media influencer was also killed in broad daylight in Amritsar. So repeated incidents where, you know, there have been attacks, there have been murders that have occurred in the broad daylight, which are now leading to the opposition mounting attack at the Aam Aadmi Party government. Back to you.
1: Reet, thank you very much for getting us those details. And like Reet was telling us about how an influencer was just shot dead last night. Well, a Punjabi social media influencer and makeup artist was shot dead in a broad daylight in Amritsar. His name was Matt Sandhu. He was attacked by two motorcycle-borne assailants while he had come to collect his car from a shop. Around 2 to 3 rounds were fired at the close range, we learned. Sandhu, the influencer, was rushed to hospital, but he succumbed to his injuries. The attackers fled and the motive is yet to be established. Now, the opposition has trained its guns on Chief Minister Bhagwant Mann over the Amritsar killing, with Congress alleging a collapse in law and order, while the BJP has called Punjab a crime capital and says that the AAP government has failed completely.
2: Social media influencer hai hamare yahan ke, Matt Sandhu karke. उनकी आज लाहौर का रोड पे जो है दो गोली शॉट्स लगने से उनकी अभी 40 में डेथ हुई है. तो इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेजेस पे है. वी हैव क्लूज ऑन, वी विल सॉल्व इट वेरी सून. उनके फादर, उनकी फैमिली सारी यहाँ पे है. उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हमने FIR दर्ज करके इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन है स्टार्ट कर दी.
3: देखो कल अंदर एक होर इन्फ्लुएंसर संधू नु मार दिता अमृतसर अंदर, एक सरपंच या फॉर्मर सरपंच नु मारता लुधियाने च. पुलिस की करे, पुलिस तो 24 घंटे इन्हों की सुरक्षा च लगी रही है. मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, जिन्होंने कोई चौंक च खड़िया पछाणदा ना हैगा, इन्हों सुरक्षा करन ते लगी रही है. ये पंजाब नू बर्बाद करन ते लगे ने दोवें हत्थां दे नाल. पंजाब दे लोग इन्हों माफ नहीं करनगे. अज मैं कहना चाहुंदा है शिक्षा मंत्री जिनी जी अगर इन्नी जी भी गैरत बची आ, ते अज उहदे MLA दे एक्सपोज करन दे बाद उहनू खुद रिजाइन देना चाहिए और कहना चाहिए उस MLA नू सुखबीर नाल जाके खड़े होके कि भरा तू सच दी आवाज बोली, मैं भी तेरे नाल खड़ा है. पर गैरत बची नहीं, ऐसा करनगे नहीं. वैसे मैं तुम्हें दस रहे से ऐसा करना चाहिए.
4: देखिए, आज मैड संधू का अनपछाते लोगों ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया, और हैरानगी इस बात की है कि सरकार अभी भी सोई हुई है. लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ है. पंजाब में डर का माहौल है. पंजाब के लोग डर के साये के नीचे सो रहे हैं, और यहां पे भगवंत मान की सरकार बड़े बड़े होल्डिंग लगा करके कह रही है कि शानदार सरकार, ईमानदार सरकार. अरे, ये तो बेईमान सरकार है. लेकिन हैरानगी इस बात की है कि ना केजरीवाल ना भगवंत मान इस पे कुछ बोलते हैं. आज पंजाब के हालात बद से बदतर हैं और लोग डर के साये के नीचे जीवन जी रहे हैं.
5: बहुत दुख की बात है जो मैड संधू के ऊपर भी गोली चली है, और लुधियाने में सरपंच भी मारा गया है. और मैं ये लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल तार तार हो गया है पंजाब का, और यहाँ तक कि जो क्रांति के शिक्षा क्रांति की बात है उसके भी ऊपर आपके उनके MLA ने कैसे सवाल उठाए हैं. सो ये कुल मिलाकर जो आम आदमी पार्टी है, ये सिर्फ प्रदेश से को दो हाथ से लूटने के लिए आए थे. इनका जो वेल्थ है आम आदमी पार्टी का, देखो इनके लोगों का कितना कितना बढ़ चुका है जब से ये यहाँ हैं, और पंजाब कर्जे में डुबो दिया है. और लॉ एंड ऑर्डर मतलब आप कोई आदमी सेफ नहीं है, कोई बिजनेसमैन सेफ नहीं है. छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बड़े लोगों तक सबको थ्रेट कॉल आ रही है, और पैसे इठे जा रहे हैं, और उनसे जो फरौती ली जा रही है वो शरेआम यहीं के लोग हैं जो बैग भर भर के ले जा रहे हैं लोगों से. और क्या पुलिस को नहीं पता, क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

से ढाई साल पहले हमारे दिमाग में आया कि इन दोनों जो म्यूज़िक के हमारे ये लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे स्टाइल्स हैं, रॉक स्टाइल है और देसी है, इनको अगर हम कंबाइन करें, डिवोशनल को भी तो रॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, ताकि एक नया रूप, एक नया रंग आए।

0: But a new sound doesn't arrive with an audience attached.
1: कई इवेंट्स हमने ऐसे किए हैं जहाँ पे मुश्किल से हमें 10 लोग सुनने आए हैं. वो जो एक डेढ़ साल था वो लोगों को ये समझाने में हमें टाइम लगा कि हाँ डिवोशनल म्यूजिक इस तरीके से भी हो सकता है, ये म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे भी किया जा सकता है.

हमने उसमें डिवोशनल म्यूजिक में रॉक स्टाइल तो जोड़ा, लेकिन जो भजन की जो कहते हैं ना रूह है उसको ख़त्म नहीं किया, उसका जो फील है उसको वैसे का वैसे ही रखा, बस मॉडर्नाइज कर दिया।

0: प्रेजेंटेशन मतलब इनका एक्सपीरियंस था, आज हमने बहुत ज़्यादा मज़ा करा, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम लाइफ में अटेंड करा है प्रेजेंट।
1: एक्चुअली में सब बढ़ती था, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था, एक्सपीरियंस इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, आने में इंटरेस्टिंग था, चेंजेस के साथ जुड़ने का नया तरीका है, इम्प्रेसिव, पूरा ओवरऑल इम्प्रेसिव।

0: मैंने इससे पहले भी फ्रेशर्स अटेंड किया और उसकी जो म्यूज़िक होता है उसके बाद आपका सर बस करता है, कानों में दर्द होता है, बट आफ्टर भजन क्लबिंग इतना स्मूदी फील हो रहा है, कोई इरिटेशन नहीं है, एकदम फ्रेश हो जाता है ना मन, वो फ्रेशनेस आई है।
1: That evening, there was also seemingly an unexpected addition to the audience.
2: We were told that there might be some VIP moments right before the show, and we didn't know who exactly it could be, but we saw a lot of security arrangements happening.

0: मैं तो शॉक हो गया था जब मैं सुन रहा हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम सारे दोस्त मिल के हमने वो फ़ोन से बनाया था, वी लव यू मोदी जी। तो ये बहुत प्यारा मोमेंट था हमारे लिए।
1: कुछ प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ वाइब कर रहे थे, इट वॉज यू नो वेरी ब्यूटीफुल एनवायरमेंट, यू नो वेरी ग्लैमरस एनवायरमेंट।

0: There was a pilot with thousands of hours in the sky, years of experience and a reputation among colleagues for being calm and professional. This is Captain Smith Mack and this is his story.
1: For the last few days, one name has dominated the headlines across India and around the world. Captain Smith Machar, an Indian commercial pilot who found himself at the center of an extraordinary mid-air emergency. On September 30th, Fly Dubai flight FZ1073 was flying from Dubai to Tel Aviv when an altercation erupted inside the cockpit. It was the heroism and valor of the captain, Smith Machar, that saved the day. Long before he became known around the world for his actions, his courage, and his valor, Captain Smith Machar had already built a substantial career in commercial aviation. With over 13 years of aviation experience and nearly 9,750 flight hours, he has spent most of his career flying Boeing 737s, including more than 6,400 hours as pilot in command. He joined Fly Dubai in 2022 after over a decade with SpiceJet, where he rose from first officer to senior commander and line training captain. However, his aviation journey was not something he had always planned. Machar initially studied textile engineering before pursuing management studies. His path changed after he developed an interest in aviation. He eventually completed commercial pilot training in New Zealand and went on to train for the Boeing 737. From there, the cockpit became his workplace, and thousands of hours in the air became his experience. Former colleagues who worked with Machar at SpiceJet describe him as calm, knowledgeable, and professional.
2: We met in dispatch and he comes out to be very nice, humble and very respectful guy. Like he respects each and everyone.
1: Machar has spoken about those moments himself. Speaking to Prime Minister Modi from his hospital bed, he described how he opened the cockpit door after the attack, allowing passengers and crew to intervene. And that account, the heart-to-heart conversation with the Prime Minister, is perhaps the clearest window into what was going through Captain's mind.
3: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश अगर स्मिथ कर दे दरवाजा बस वही है और तभी भी मैं मार खा ही रहा था बस वो खोल दिया सर बाकी सब आ गए
1: For his family, however, the last few days have been less about heroism and more about survival. Machar's father, Bhupendra Machar, told NDTV that the family's first reaction when they heard about the incident was fear. His son was injured. The family prayed for his safety. His father said that Smith's overriding thought during the crisis was that no passenger should lose their life.
4: सक्सेस हो गया और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था
1: एंड देन देयर इज द अदर साइड ऑफ स्मिथ्स लाइफ हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन आर इन दुबई व्हाइल हिज पेरेंट्स आर इन मुंबई हिज फादर डिस्क्राइब्ड फ्लाइंग एज सेंट्रल टू हिज सन्स लाइफ सेइंग दैट स्मिथ इज डीपली कमिटेड टू हिज प्रोफेशन फॉर मिलियंस Captain Smith Machar is now the face of a remarkable aviation survival story. For his former colleagues, he is the senior pilot they knew as calm and knowledgeable. For his childhood friends, he is the boy they grew up with. For his parents, he is simply their son. And for the passengers aboard flight FZ1073, he is the captain who, even after being seriously injured, kept fighting to get that cockpit door open. Today, Smith Machar is recovering in an Abu Dhabi hospital. The investigation into exactly what happened inside that cockpit continues. But the story of the pilot himself is already much bigger than the incident that made him famous.
0: Well, at 35,000 feet, inside the cramped, locked confines of a cockpit, there is no escape. There is perhaps no calling for backup. There is only training, there's instinct and raw human grit. Captain Machar fought off the attacker, wrestled control of the aircraft and brought 174 passengers safely down to earth. Listen in to what his father, Bhupendra Machar, told us on NDTV. His first reaction wasn't pride, it was pure parental fear. He rushed to a temple, lit a lamp and prayed that no bad news should come.
5: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smit Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. आपके बेटे पर पूरा देश का गर्व है. क्या आप बता सकते हैं भूपेंद्र भाई, स्मित अभी कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है? उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए, साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
4: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए, तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम उनके वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
5: स्मित ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
4: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज स्मित अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना अभी, अपन शांति से कल बात करेंगे.
5: भूपेंद्र भाई, स्मित के जख्म कितना सीरियस है, इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
4: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
5: भूपेंद्र भाई, आप स्मित के पिताजी हैं, आप और स्मित के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
4: जैसे जैसे हर माँ बाप का होवे, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
5: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में, आप में विश्वास था?
4: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई. और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले.
5: जी, और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में. हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा. डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर.
4: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, के जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा. तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया. और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था. तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई।
5: भूपेंद्र भाई, क्या स्मिथ हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना? उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
4: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है। वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी, ऐसा समझ लो
5: जी।
4: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
5: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे? फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
4: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
5: और क्या?
4: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
5: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
4: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी है वो।
0: Well, Captain Smith Max, extraordinary actions aboard the Fly Dubai flight have triggered a growing chorus of calls to honor him. From national recognition to bravery awards, the demand is clear. The pilot to put the lives of his passengers ahead of his own should be formally recognized for his bravery and courage as well.
6: Captain Smith Machar, the hero, the man of the moment, and the savior of over 180 passengers, fought to keep them safe even as his own life was at grave risk. Today, that courage is being remembered and a nation is asking for it to be honored. From the Ashok Chakra to the Bharat Ratna and National Bravery Honors, calls are growing to recognize the hero pilot who put his passengers' lives ahead of his own.
7: No, we need.
6: The Federation of Indian Pilots has written to the PMO, seeking a National Bravery Award for Captain Smith. The pilot's body says Smith showed extraordinary courage, putting the safety of passengers and crew above his own personal safety. And the call for honor is growing louder. Rajya Sabha MP Milan Deora, former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat, author and lyricist Javed Akhtar and Shefali Vaidya have publicly praised Smith's courage and called for him to be honored. But while the world salutes his courage, Smith continues his recovery fight. However, he remains stable and is responding well to treatment in Abu Dhabi. His family has also been allowed to meet him at the military hospital.
4: और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है।
6: Seriously injured, yet he continued to respond to the emergency, helping bring the flight and its passengers to safety. A pilot who, in the moment of crisis, chose duty over fear. In fact, he went beyond his call of duty. And today, his courage has traveled far beyond the cockpit. From Prime Minister Narendra Modi to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, world leaders have publicly acknowledged Captain Smith's bravery. Today, the question is no longer just about what Captain Smith did in that cockpit. It is about how a nation and the world chooses to remember a pilot who put others' lives first. Bureau Report, NDTV.
0: On that note, we're slipping into a very short break. I'm right back. Lots more lined up for you here on NDTV.
8: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. We are getting in some breaking news as far as the law and order situation in Punjab is concerned. Well, the BJP has reacted to the murder of former Sarpanch Navtej Singh Neetu in Ludhiana. The BJP has alleged a law and order failure under the Aam Aadmi Party government in Punjab. The party has targeted Chief Minister Bhagwat Mann, who also holds the home portfolio over the killing. The BJP has called for justice and questioned the government over the security situation in the state. That's the reaction that's coming in. Reet is joining me on the broadcast on that note. Reet, political reactions coming in, and this comes right ahead of the elections.
1: Right, absolutely. Tanisha, you rightly mentioned, like, you know, we've been discussing so far that the opposition is upping the ante against the Aam Aadmi Party government in Punjab, saying that law and order is a big problem that they are seeing. Remember that there have been three incidents in the span of 24 hours, and in the latest union Minister Ravneet Singh Bittu, who in fact is reacting to this. He's in fact gone on to slam the Aam Aadmi Party government. The BJP leader has now gone on to say that it is gangsters who are ruling the streets of Punjab. So Ravneet Bittu in the latest has reacted to this, saying that Home Ministry, which is something that comes under the Chief Minister himself, is something that is seeing a decline. There is a law and order problem in Punjab. Not just Ravneet Bittu, Shiromani Akali Dal's Bikram Majeetia as well, who happens to be the General Secretary of the party and a very senior leader, has also now gone on to train guns at the Aam Aadmi Party, saying that law and order is something that they are unable to control. Right. Remember, Tanisha, like you said, that this is heightened political activity that is coming to the fore right ahead of those crucial 2027 polls that are slated to take place in Punjab. Talking a little about the former Sarpanch in this case, he was gunned down at about 6:27 p.m. yesterday. There were as many as 13 rounds of fire that were fired at him by two bike-borne assailants. So an investigation is underway in this particular case.
0: Yes.
1: But like you said, larger questions about law and order of Punjab being raised by the opposition. Back to you.
0: Reet, thank you very much for getting us those details. One more breaking news that's coming in. This is from the National Capital, where there's live action now at Jantar Mantar, where ISA workers and Aam Aadmi Party leaders are marching towards Jantar Mantar, and they have been demanding Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's resignation over the claims of vote chori. These are the fresh visuals that we'll just get to you in a moment, where ISA and Aam Aadmi Party workers are marching towards Jantar Mantar. There's commotion that's been seen. The police has been trying to stop them. As you see in the visual, there's a lot of commotion. Divyankar is joining us live from the spot, I believe. Divyankar, what's happening around you? Take us through the details.
2: जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अशोका रोड की। यहाँ पर आप मेरे ठीक पीछे देख पाएंगे, ये रास्ता आगे जंतर मंतर की तरफ जाता है। और चूंकि ऐसा की तरफ से कॉल दिया गया था, लगातार जो प्रदर्शन है वो ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहा है। और इसी प्रदर्शन के दौरान बीच में एक देखा गया कि किस तरह से कथित तौर पर जो बदसलूकी वाले महिलाओं के साथ बदसलूकी जो हुई, उसके वीडियो भी सामने आए। और जिसके बाद दिल्ली पुलिस के ऊपर जो कार्रवाई है, एक्शन हो, इसकी मांग के साथ साथ ज्ञानेश कुमार सीईसी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका जो इस्तीफा हो, इसकी मांग के साथ बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। जंतर मंतर तक जाने का जो ऐलान है, मार्च करते हुए इंडिया गेट से अशोका रोड होते हुए सीधे जंतर मंतर तक जाने का ऐलान जो है वो किया गया था, लेकिन फिलहाल आप देख पाएंगे बड़े बड़े पैम्पलेट पोस्टर के साथ यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। आयसा की तरफ से इस मार्च का जो कॉल है वो दिया गया था, और इस प्रोटेस्ट को सिटीजन्स मार्च नाम दिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, चूँकि पूरे इलाके में BNS की धारा 163 लगी हुई है, किसी को भी प्रदर्शन करने की जो अनुमति है वो नहीं है और लोग अपने घरों की तरफ वापस जाएं। अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इंडिया गेट के पास जब आम आदमी पार्टी की जो छात्र इकाई है वो यहाँ पर जब पहुँची प्रदर्शन करने के लिए, तो उन सभी को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया और वहाँ से बसों में भरकर हटा दिया। अब फिलहाल लेकिन ISA की तरफ से जो ये कॉल दिया गया था, इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरह से, जहाँ पर आप देख पाएंगे शांग्रीला होटल है उसके ठीक सामने, चूंकि आगे जो प्रदर्शनकारी हैं वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं और रास्ता यहीं पर बंद कर दिया गया। तमाम जो MP के घर हैं यहाँ पर आसपास बने हुए हैं, सरकारी आवास है उनका, लेकिन उन सब के बावजूद यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बैरिकेड है वो लगा दिए गए हैं। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए हैं। कथित तौर पर जिस तरह से गड़बड़ियाँ जो हैं वो सामने आई SIR के दौरान, जो बाकी जो चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर संधू और विवेक जोशी, उनकी तरफ से जो आपत्तियां दर्ज कराई गई थी इसकी जब जानकारी मीडिया में सामने आई तो बीते 10 महीने में 14 बार जो आपत्तियां हैं वो बाकी दो जो चुनाव आयुक्त उनकी तरफ से दर्ज कराई गई, और ये आरोप लगा कि ज्ञानेश कुमार पूरे जो इलेक्शन कमीशन है उसमें अपनी मनमानी चला रहे हैं, और जिसके बाद सड़कों पर जो प्रदर्शन है वो देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है, और दिल्ली में खासकर जंतर मंतर के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। लगातार जो इस्तीफे की मांग है वो की जा रही है। हमने देखा कि इंडियन यूथ कांग्रेस या फिर NSY जो है या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनकी तरफ से भी जो प्रदर्शन है उसका ऐलान जो है वो किया गया है। आने वाले दिनों में ये भी संभावना है कि 6 तारीख को जो विपक्षी दल के सांसद हैं वो इलेक्शन कमीशन तक मार्च कर सकते हैं। इसका ऐलान जो है वो भी कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी जो है वो दी गई है, और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है। इसके साथ साथ ज्ञानेश कुमार के ऊपर मुकदमा जो है वो भी चले, तो तमाम तरह की जो मांग है वो की जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से पूरा जो एरिया ये आप देख पाएंगे। दूसरी तरफ की हम आपको तस्वीर इस तरफ दिखा दें कि देख दिल्ली पुलिस के साथ साथ बड़ी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चलता रहे इसकी जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की गई है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, बसें भी यहाँ पर लगाई गई हैं, दंगा निरंतर वाहन जो है इनकी भी एंटी रॉयड व्हीकल जो है इनकी सबकी भी तैनाती जो है वो आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आएगी। और यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किस तरह से चल रहा है, बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो आपको इन तस्वीरों में खड़े हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। अशोका रोड का ये रास्ता है, शांग्रीला होटल के ठीक सामने की ये तस्वीर है, और यहाँ पर किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो जुटे हुए हैं। सिटीजन्स मार्च जो है इस प्रदर्शन का नाम दिया गया है, लेकिन लगातार जो ये भीड़ है वो फिलहाल यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखने वाली बात हुई कब तक जो यहाँ पर ISI की तरफ से ये सिटीजन्स मार्च का ऐलान किया गया है ये कब तक ऐसे ही जारी रहता है।
0: जी दिव्यांकर, दे आर गेटिंग अस डिटेल्स देयर ऑफ द प्रोटेस्ट मार्च दैट्स बीइंग हेल्ड इन द नेशनल कैपिटल। रिमेंबर अर्लियर CJP हैड आल्सो अनाउंस्ड अ प्रोटेस्ट मार्च, दे इवन फैक्ट हेल्ड अ प्रोटेस्ट मार्च इन मुंबई, दैट वाज एक्सट्रीमली काम एंड नॉट क्योटिक, बट हियर वी सी द ISA एंड आम आदमी पार्टी वर्कर्स मार्चिंग टूअर्ड्स जंतर मंतर। Our reporter just giving us those details that the permission to protest was not allowed and hence the pushback from the security forces there. There seems to be a lot of commotion as far as the protest is concerned. What remains to be seen is how far this protest can go. With that, it's time for us to slip into a very quick break. Don't go anywhere. News and update continue.

0: Good evening, hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. Uddhav Raj Thackeray hits streets against CEC Gyanish Kumar, demand his resignation. Say this is like the revolt of 1857. 2006 suicide case haunts CEC Gyanish Kumar. Kerala government opens 20-year-old case linked to Gyanish Kumar. He was named in engineer suicide note back in 2006. And Stalin Uday mock Tamil Nadu Chief Minister Vijay for sipping tea, rising a tractor ahead of bipoles, calls they show off, say he can do only things that he did in movies. And BJP slams Rahul Gandhi's silence on hero Indian pilot Smith, asked why no word of praise so far, says Rahul's silence is soft support for terror. And Captain Smith Machar recounts the terrifying cockpit attack, saying that the co-pilot suddenly turned violent after praying. As blows rained down and the plane sharply descended, Smith fought to reach the cockpit door, later saying Hanuman Chalisa gave him the courage. Israel media's Fly Dubai revelation. Israel knew of the crew details, failed to flag Omani co-pilot Al-Hamami. Reports say Israel had all the details of Al-Hamami. And Al-Qaeda hails Omani co-pilot Al-Hamami, calls Fly Dubai flight a Zionist UAE plane, likens the incident with a deadly 9/11 attack. Right. All right, let's cut across to some latest news at this hour. There's live action at the Jantar Mantar here in the national capital. ISA workers and Aam Aadmi Party leaders marched towards the Jantar Mantar demanding the resignation of CEC Gyanish Kumar. That's the word coming in. ISA, the left body's student wing, has been at the forefront when it comes to organizing protests against Chief Election Commissioner Gyanish Kumar. We also have the Aam Aadmi Party workers who have joined in the protests. Divyankar with us on the broadcast, getting us more details on that story. Divyankar, over to you. Give us a sense of what's happening there, where you are right now.
1: जी बिल्कुल, देखिए मैं अभी फिलहाल अशोका रोड पर मौजूद हूँ और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा कि जो शांग्रीला होटल है और ली मेरिडियन होटल के बीचों बीच में यहाँ पर बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो पहुँचे हुए हैं। इस मार्च का ऐलान जो है वो किया गया था आयसा की तरफ से, इसे सिटीजन्स मार्च जो है वो नाम दिया गया है और इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की जो तैनाती है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इस मार्च का ऐलान इस वजह से हुआ था क्योंकि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है और उस सबके बीच ये भी तस्वीरें सामने निकल कर आई जिसमें दिल्ली पुलिस के ऊपर ये आरोप लगा कि महिलाओं के साथ कथित तौर पर जो बसलूक की है वो की गई और जिसको लेकर एक्शन जो है वो हो। और इस पूरे मामले में बात करें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से मामला जो है वो दर्ज किया गया है और क्राइम ब्रांच को जो पूरा मामला है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है और वही इस पूरे मामले की जाँच जो है वो करेगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह से व्हीलचेयर पर भी जो शख्स हैं वो यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुँचे हुए हैं। और इसके साथ साथ ऐसे ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की जो परमिशन है, इजाज़त है, वो नहीं दी गई है। और चूँकि ये जो प्रदर्शन चल रहा है और इसके चलते कहीं ना कहीं जो अब ट्रैफिक है वो भी यहाँ पर, ट्रैफिक जाम वाली जो स्थिति है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। दिल्ली पुलिस के जो ट्रैफिक कर्मचारी हैं वो भी आपको यहाँ पर ट्रैफिक आसानी से यहाँ से चलता रहे इसको लेकर इनकी जो तैनाती है वो भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो बैरिकेड्स हैं वो भी लगाए गए हैं। ज्ञानेश कुमार के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे, जिस तरह से कथित तौर पर तमाम सारी गड़बड़ियां जो है वो की गई,
0: ना चाहूंगी
1: एसआईआर के
0: हम यहाँ एनडीटीवी पर बता रहे हैं कि जो आप हमें आंखों देखा हाल बता रहे हैं, यू टेलिंग अस द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड दैट हाउ द पुलिस इज ट्राइंग टू कंट्रोल द एंटायर सिचुएशन एंड देयर इज नो फॉर्मल परमिशन दैट हैज बीन गिवन सो फार। माय कॉलीग दिव्यांकर फ्रॉम द ग्राउंड जीरो। पर दिव्यांकर, जब भी कोई एक धरना होता है, कोई प्रदर्शन होता है, जैसे इसकी तो कोई परमिशन दी नहीं गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, आपने बताया लगभग कितने लोग मौजूद हैं, आपने बताया ट्रैफिक भी डिसरप्टेड क्राउड है इस समय। आयसा और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे वर्कर्स वहाँ मौजूद हैं, मगर जो क्राउड की हम बात करें, किस तरह का क्राउड है? क्या पूरी तरीके से पॉलिटिकल क्राउड है वहाँ पर, या कुछ इंडिपेंडेंट वॉइसेस भी देखी जा सकती हैं, कुछ छात्र भी आए हैं, माहौल किस तरह का?
1: जी, सब तरह के जो क्राउड हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए एफिलेटेड जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, या फिर आम लोग, और या फिर जो छात्रों की इकाई है उनसे जो जुड़े हुए छात्र हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर शामिल होने के लिए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा दें, चूँकि लोग जो हैं उन्हें धीरे धीरे पुलिस जो है वो डिटेन कर रही है, अतिरिक्त सुरक्षा बलों को जो तैनात है वो भी किया गया है, और दिल्ली पुलिस के साथ साथ और जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं उनकी कोशिश यही है कि जो ट्रैफिक है इस प्रोटेस्ट के चलते वो बाधित ना हो। अभी फिलहाल जो प्रायोरिटी है वो है, लेकिन दूसरी तरफ लोग जो हैं वो यहाँ पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर पहुँचे हुए थे। बड़ी संख्या में लोगों को जो डिटेन है वो भी किया गया। सामने आप तस्वीर हम आपको दिखाएं तो एंटी रॉयट व्हीकल की जो तैनाती है वो भी आपको दिखाई पड़ेगी। दोनों होटल्स यहाँ पर सामने हैं, शांग्रीला होटल, दी मेरिडियन होटल, उन दोनों के बीच जो अशोका रोड का रास्ता जंतर मंतर की तरफ जाता है वहीं पर जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ पर काफ़ी देर तक जो है वो बैठे थे, और धीरे धीरे करके दिल्ली पुलिस की तरफ से

0: से इन्हें यहां से डिटेन करके हटा दिया गया है। अभी भी लेकिन काफ़ी जो प्रदर्शनकारियों की संख्या है वो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी और इस तरह से जो तस्वीरें हैं वो भी आपको नज़र आएंगी, लेकिन लोग जो हैं वो आपको यहां पर नज़र आएंगे। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर ये लोग यहां पर पहुंचे हुए थे और लगातार उनके इस्तीफे की मांग को लेकर हमने देख रहे हैं कि किस तरह से जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, वो दिल्ली के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो भी चल रहा है। और इस तरह से छोटे छोटे चंक जो हैं वो अभी भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और धीरे धीरे करके इन लोगों को हटाने की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार दिल्ली के साथ साथ देश के तमाम हिस्सों में जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 6 तारीख को जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो मार्च करते हुए इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे, तो उस दौरान दिल्ली पुलिस की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, किस तरह के जो नारेबाजी, किस तरह से रूट डाइवर्जन, उन सब पर जो दिल्ली पुलिस के साथ साथ हम सबकी जो निगाहें वो रहेंगी। लेकिन लगातार ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रदर्शन है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांकर ये सारी जानकारी हम तक लाने के लिए। माई कॉलीग दिव्यांकर रिपोर्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड पॉइंटिंग आउट हाउ द पुलिस इज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, डिस्पर्स द मॉब, ऑफ कोर्स दिस इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, यूजुअली दे आर लेट ऑफ, ऑल द प्रोटेस्टर्स वुड बी लेट ऑफ इन अ कपल ऑफ आवर्स, दैट इज द नॉर्मल SOP विच इज फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। आम आदमी पार्टी वर्कर्स, ISA वर्कर्स, द लेफ्ट पार्टी स्टूडेंट विंग, डिफरेंट योनर ऑफ पीपल हैव रीच्ड देयर, डिफरेंट पीपल डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। एज माई कॉलीग पॉइंटेड आउट दैट देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी of the opposition member of parliament joining in the protests as well. All right, let's talk about this. A 2006 case involving Chief Election Commissioner Ganesh Kumar has now been reopened for vigilant security in Kerala. The case dates back to the suicide of the Malaysian civil engineer Lee C. And he was associated with Patibil Consortium working on the MC Road project under the Kerala State Transport Project. At that time, Ganesh Kumar was Kerala's Public Work Department Secretary. Now, his suicide note reportedly mentioned Kumar amid allegations of irregularities and pressure linked to the project. Allegations against Ganesh Kumar include money demands, bribes for a bill clearance, misconduct in contracts, pressure on the engineer, and alleged influence over the original probe. But this is a 2006 case, mind you. The DMK has demanded a thorough probe into the 2006 suicide case linked to the Chief Election Commissioner. The party says that the investigation must establish the facts and bring out the truth surrounding the allegations.
2: Yesterday I received a complaint from Mr. Malegir Venugopal, a Congress leader from Kerala. In that request, he was asking for a vigilance inquiry on the C. Ganesh Kumar, then PWD secretary in Kerala. That during his tenure as PWD secretary, a Malaysian project engineer C. Lee has been harassed and he committed suicide in Kuala Lumpur, alleging a lot of irregularities and corruption in PWD department, and that is why he couldn't complete the MC Road project. KSTP project from Angamali to Trivandrum. Mr. Ganesh Kumar's name was also mentioned in the suicide note. There's two suicide notes were there, written to his wife. But it has not been investigated properly. All these things was explained in the letter. So when I go through the letter, I feel that there is a cognizable offense in that. So earlier there was a vigilance inquiry and it has not been completed. It is in the halfway. And he has been transferred to Delhi in the Central Service and he was continuing there for 10 years. So I feel that it should be inquired properly. Further inquiry has been ordered by me and the instructions were given to the vigilance director on this regard.
3: See, this man is a corrupt. That is well known because what he is doing now in the elections exposes his caliber. He is not a proper man. He had done. He is doing to appease BJP. He is not fair and neutral because the election commission should be fair and neutral. But this man, after becoming CEC, he has helped BJP to win.

0: exceptional performances. Kumkum Mohad is her medal is something we never expected. In fact, at the end of the match, when we spoke to Ankita Bhakat, one of her teammates with whom she won the team gold, Ankita very clearly told me that they didn't expect that morning when they went out to play the South Koreans, they didn't expect to win against South Koreans. They said that in the team, they told each other that they were in Nagoya to enjoy the moment, to have fun, and they will accept what comes out of having fun with each other. That was the conversation between the three girls when they went out to shoot against the South Korean, the much more experienced archery team that, from South Korea, a team that has not lost Olympic medal for the last 28 years.
1: Yeah.
0: And these are ranked newcomers. A great deal of credit given to Kumkum Mohad for, just going out there and doing the job. Really an uncluttered mind youngster who has no fears about the big stage at all. She knows that there is a job to be done and she wants to go out there and get it done.
1: You know, sometimes that raw energy of being the youngest in the contingent and also the no fear attitude takes you to the glorious medals that you have accumulated for your country there. And of course, our girls telling the South Koreans, why should you only have all the fun? We are there to enjoy the party as well. Now, let's talk about India's total domination across three sports. That is also an extremely pleasant scene to really play out once again. In three sports, we got double golds. It was the sport of Kabaddi, where both our men and women team won the gold medal. Again, in the sport of hockey as well, both the men and the women team. It was the first time, in fact, in 44 years that both the teams entered the finals and both of them came up trumps, winning the gold medal and also a double gold in the sport of cricket as well. This was never a doubt. Harmanpreet Kaur and Shreyas Iyer delivering those gold medals for the Indian cricket teams as well. So in these three sports, there was total domination from Indians. We have a lot of reactions that we captured after the hockey gold medal match and, of course, the cricket gold medal match. Take a look at some of them.
2: हमें ये बताइए दोबारा दो दो दो लगातार back to back medal जीतना defend करना कितनी बड़ी बात है एशियन खासकर एशियन गेम्स के medal.
3: I think ये काफी important था हमारे लिए और back to back जीतना एक हमेशा एक अच्छा रहता है खुशी रहती है कि आपने काफी अच्छा जो दबदबा है बना के रखा हुआ है यहाँ पे एशियन गेम्स में और एक्चुअली क्या था इससे क्या होता है सभी को पता है कि एशियन गेम्स से जब आप जीतते हो गोल्ड मेडल जीतते हो तो आप डायरेक्ट क्वालिफाई करते हो ओलंपिक्स के लिए और हम लोगों ने अभी डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया एलए के लिए तो वो एक हमारे लिए काफी प्लस पॉइंट है अभी और क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है कि हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप के ऊपर और ज्यादा काम कर सकते हैं अभी हमें क्वालिफाई का स्ट्रेस नहीं रहेगा तो कि हाँ कि हमें क्वालिफाई राउंड का वरीड नहीं है वो हमें तो अभी अपने फिटनेस के ऊपर और चीज़ें जो हैं कि कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को कि जो एलए में जाएं तो ऐसी कोई चीज़ें ना रही हों कि जहाँ पे हम लोगों ने काम ना किया हो
2: दो तीन चीज़ें मुझे बताएंगे जो कि आप डिफरेंट करना चाहेंगे As you progress towards LA?
3: कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हम लोग अपने डिफेंस के ऊपर और ज़्यादा काम करना चाहेंगे कि हाँ कि हम लोग और अपना कैसा डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि अगर आप डिफेंड अच्छा करते हो तो आप टूर्नामेंट्स जीत सकते हो ठीक है तो यही है कोच का भी यही मंत्र है कि अगर आप डिफेंड टू विन कि अगर आप डिफेंड अच्छा करोगे तो आप किसी भी टीम को बीट कर सकते हो तो क्योंकि हमारे पास काफ़ी अच्छे स्ट्राइकर्स हैं कि वो कभी भी गोल कर सकते हैं बट अगर हमें पीछे डिफेंस हमें स्ट्रॉन्ग रखना होगा तो उसके ऊपर है और चीज़ें रहेंगी अभी आने वाले टाइम में देखा जाएगा और क्योंकि हर टीम कुछ ना कुछ चेंज करेगी तो उसको कितनी जल्दी हम लोग अडॉप्ट करते हैं और उसको कैसे हम लोग उसका तोड़ निकालेंगे है ना तो वो इम्पोर्टेंट काफ़ी रहेगा हमारे लिए
2: आपको लगता है पाकिस्तान को सेमीफाइनल में खेलना एक एडवांटेज रहा इंडिया के लिए मतलब एक तरफ से पहले खेल लिया तो प्रेशर नहीं है फाइनल में किसी से भी भीड़ लेंगे
3: एक्चुअली ऐसा होता है मैम जब आप ऐसे बड़े इवेंट्स पे आप खेलते हो एशियन गेम्स या कोई वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स होते हैं तो आप किसी भी टीम को कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं और पाकिस्तान अच्छी टीम है
4: well, 2026 was, we've just been topped off nicely now. The World Cup was tough for us, and I think we had high aspirations of doing well. But now, within 3 weeks, we had to come and perform, and I think we did that immeasurably. Super proud of the guys. It's not easy to do that, and we did it. And also the way we came through the semi-final against Pakistan, we played a great first half. They played a great second half, and in the last 40 seconds, we found a way to win, and it was.

0: And we did, and tonight's proof.
1: What are the areas you would like to tighten from now on as we head to the LA Olympic Games?
0: We just got to keep playing the best teams in the world and prepare for that and do a good job of knowing where we are needing a gap and filling the gap. At the same time, we've got some younger players that need experience. So our goalkeepers did well in this tournament. We've obviously got a big squad, and now the competition is wide open.
1: हमारे साथ है तिलक वर्मा, जिन्होंने अभी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है. तिलक, हमें बताइए कि जब गोल्ड मेडल लेकर आप पोडियम में खड़े थे, व्हाट वाज द फीलिंग?
2: फीलिंग तो बहुत डिफरेंट फीलिंग है. जब जैसा हम लोग हमेशा जैसे वर्ल्ड कप जीते कुछ महीने पहले और एशिया कप, वो सब चीज़ भी जीते हैं, मगर ये एशियन गेम्स ना कुछ इसका फीलिंग अलग है. जो गोल्ड मेडल मिलेगा आपको और आपका तिरंगा आप उठा पीछे लगा के ऊपर करके जो फ्लाइंग कलर सब अपना ऊपर लेटाते इधर, तो वो सब चीज़ मतलब डिफरेंट फीलिंग जो यूजुअली हम लोग एक्सपीरियंस करते उससे बहुत डिफरेंट फीलिंग है. मगर मैं लकी हूँ, मैं 2023 में चाइना में जीते थे. अभी यस, अभी फिर से सेकेंड टाइम. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर गॉड.
1: व्हाट इज इट अबाउट पाकिस्तान एंड तिलक वर्मा?
2: कुछ नहीं, इट्स ऑलवेज मतलब हाई प्रेशर गेम होता है पाकिस्तान, एंड दे हैव ऑल्सो प्लेड रियली वेल टुडे. बट द सेम पॉइंट मैं कुछ ज़्यादा सोचता नहीं है, यू नो इस गेम में ज़्यादा इमोशंस रहते हैं. तो इफ व्हेन यू आर प्लेइंग इन दैट ग्राउंड, सो मतलब आपको पता रहना कि इमोशंस आप साइड में रखनी है. जो बचपन से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो, जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका स्किल है, उस समय टीम के लिए क्या चाहिए, वो सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा.
3: Well, there you go. Many congratulations once again to all the medal winners in Asian Games 2026. The games have come to a close, and with that, our special coverage as well. We are slipping into a short break. Thanks for watching.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: You've heard of clubbing in dark rooms, but you've ever heard of bhajan clubbing? I'm currently present at one such event, and honestly, I'm also very curious to see what it looks like. This is what it's looking like before the event. The big question, of course, is who's going to be here at the event? Is it going to be youngsters? Is it going to be some people from the old generation? What are they going to be listening to? Is it going to be songs? Is it going to be bhajans? What's it going to look like? This is what it's looking like right before the event. We are curious to find out what exactly bhajan clubbing holds for us. Come, let's find out.
1: On stage, Keshavam, their description of this sound, devotional rock. For Lavish, Sheetal, the devotional part came first.
2: मैंने अपनी शुरुआत श्रीगंगानगर राजस्थान से की और मैं जागरण करता था बचपन से ही तो माता रानी के जागरण जो कि
1: फॉर प्रकृति टू दिस म्यूजिक वाज पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप
3: बेसिकली मेरे जो घर का थोड़ा माहौल था थोड़ा स्पिरिचुअल रहा है बचपन से ही तो मैं बचपन से ही मतलब भगवान जी के भजन गाती थी और मतलब हमारे गुरु जी के मंदिर में मैं प्रोग्राम करती थी वही मतलब बचपन से वो माहौल रहा है
1: दे हैड सांग भजन्स दे हैड परफॉर्म्ड बॉलीवुड म्यूजिक देन केम एन आइडिया व्हाट कुड रॉक ब्रिंग टू द मिक्स
0: द एनर्जी हियर इज इलेक्ट्रिक इट्स एक्सट्रीमली हाई लेट मी गो क्रॉस फिंगर एंड आस्क देम हाउ दे आर फीलिंग आप हमें बताइए हाउ आर यू लाइकिंग दिस इवेंट
4: आई एम रियली एंजॉयिंग दिस इवेंट
0: आर यू लाइकिंग दिस इवेंट

से ढाई साल पहले हमारे दिमाग में आया कि इन दोनों जो म्यूज़िक के हमारे ये लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे स्टाइल्स हैं, रॉक स्टाइल है और देसी है, इनको अगर हम कंबाइन करें, डिवोशनल को भी तो रॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, ताकि एक नया रूप, एक नया रंग आए।

0: But a new sound doesn't arrive with an audience attached.
1: कई इवेंट्स हमने ऐसे किए हैं जहाँ पे मुश्किल से हमें 10 लोग सुनने आए हैं. वो जो एक डेढ़ साल था वो लोगों को ये समझाने में हमें टाइम लगा कि हाँ डिवोशनल म्यूजिक इस तरीके से भी हो सकता है, ये म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे भी किया जा सकता है.

हमने उसमें डिवोशनल म्यूजिक में रॉक स्टाइल तो जोड़ा, लेकिन जो भजन की जो कहते हैं ना रूह है उसको ख़त्म नहीं किया, उसका जो फील है उसको वैसे का वैसे ही रखा, बस मॉडर्नाइज कर दिया।

0: 100% क्लबिंग का एक्सपीरियंस था। आज हमने बहुत ज़्यादा मज़ा करा, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम ने लाइफ में अटेंड करा है।
1: एक्चुअली में सब बढ़ती था, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था, एक्सपीरियंस इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, आने में इंटरेस्टिंग था, जेन जीज़ के साथ जुड़ने का नया तरीका है, इम्प्रेसिव, पूरा ओवरऑल इम्प्रेसिव।

0: वॉज सो नाइस. लाइक मैंने इससे पहले भी फ्रेशर्स अटेंड किया और उसकी जो म्यूज़िक होता है उसके बाद आपका सर बस करता है, कानों में दर्द होता है, बट आफ्टर भजन क्लबिंग इतना स्मूदिंग फील हो रहा है, कोई इरिटेशन नहीं है, एकदम फ्रेश हो जाता है ना मन, वो फ्रेशनेस आई है.
1: That evening, there was also seemingly an unexpected addition to the audience.
2: We were told that there might be some VIP movements right before the show, and we didn't know who exactly it could be, but we saw a lot of security arrangements happening.

0: मैं तो शॉक्ड हो गया था जब मैं सुन रहा हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम सारे दोस्त मिल के हमने वो फ़ोन से बनाया था, वी लव यू मोदी जी। तो ये बहुत प्यारा मोमेंट था हमारे लिए।
1: खुद प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ वाइब कर रहे थे, एंड इट वाज यू नो वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, यू नो वेरी ग्लैमरस एनवायरनमेंट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: यकीन, चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah. NDTV stands completely engaged with Karnataka.
2: High rate, check the audio.
1: Let's do it.
3: Breaking story, we're jumping straight into it.
1: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
4: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
1: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
5: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
4: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
1: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
6: अखिलेश यादव हिमसेल्फ वाजंट प्रेजेंट देयर, डीएमके हैड बॉयकॉटेड इट एज वेल।
7: ना उनको बुलाएंगे ना हुआ।
6: राहुल गांधी टोल्ड द कांग्रेसमैन कि मोदी जी को भरोसा है कि हम सत्ता में आने वाले, मेरे खुद के पार्टी के लोगों को भरोसा है जमीन।
8: परसेप्शन बैटल जीतने के लिए ये सब बातें कही जाती है।
6: फॉर द होम मिनिस्टर टू से कि मैं एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला हूँ।
9: हमेशा टॉक्स अबाउट अ डेडलाइन। People take him seriously.
6: When that larger political message comes out, you will be right here with us saying, politics Zindabad.

0: Hello and welcome. Thanks very much for joining us on NDTV. I'm Padmaja Joshi and we are on the show where we talk pure politics. And as always, with us today saying politics Zindabad is Vinod Agnihotri, senior journalist. Also with us, Bhupen Chaubey, consulting editor, NDTV, assistant editor. Janendra Kumar joins us along with our managing editor, Akhilesh Sharma. And top of the show, of course, we're going to talk about the story of the raging showdown over the reported rupture within the Election Commission. Now, the opposition has made it absolutely clear that they are not going to give any quarter to the government on this issue. They've put out a protest calendar, and as a part of that, there were protests seen in the national capital today. There were protests in Mumbai as well. The CJP led from the front in Mumbai, and in Delhi, you saw protests which were carried out by the Aam Aadmi Party, by left parties. Even those parties which so far had parted ways with the India Alliance are now on the streets. What is their demand? Only one: resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar in Delhi, despite the police having denied them permission. Aam Aadmi Party leaders and members of several student organizations, the DIFI, SFI, they all gathered at Jantar Mantar. Hundreds, including AAP leaders Atishi and Saurabh Bharadwaj and Sanjay Singh, all of them were detained and taken away. And in Mumbai, it is the Cockroach Janata Party which led a Jail Bharo Andolan at Shivaji Park. Even there, they have not been given permission. There is heavy police deployment, but they are not willing to stop. Now, the opposition has upped the ante and is raising concerns over SIR. In fact, in an all-party meeting that was held this week, the Congress even said that elections should now go back to the ballot. The Chief Election Commissioner should resign, and in fact, so should the Prime Minister and the Home Minister.
1: देश के प्रजातंत्र को बचाना है, तो ज्ञानेश कुमार को हटाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन में सुधार करने पड़ेंगे, एसआईआर में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनको रोलबैक करना पड़ेगा, यही एक सलूशन है, और ये सरकार को मानना पड़ेगा।
2: The question is that the CEC has become a burden to the nation. In the sense that he is not understanding the gravity of the situation. Resign as early as possible and save the nation, save the youngsters. Because this will be continuing till his resignation.
3: बहुत दुख की बात है कि हर चीज के लिए हम सबको आंदोलन करना पड़ रहा है. आज 6 तारीख को हमारा बड़ा आंदोलन दिल्ली में है. हम साथ में ये वोट चोरी की जो चीज आ रही है उसके खिलाफ हम एक सशक्त लोकतंत्र के लिए पूरी ताकत से संविधान बचाने के लड़ते रहेंगे.
4: अभी सारा पर्दाफाश हो चुका है. तीनों जो चुनाव आयुक्त है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब इनका जो फेक नरेटिव है वो बस्ट हो चुका है. फिर भी फेक नरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है, इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी.
0: ओके, लेट मी स्टार्ट विद अखिलेश जी. इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोइंग टू रिजाइन?
5: नो.
0: तो ये कब तक चलेगा?
5: मुझे लगता है जब तक चले, लेकिन सरकार का ये असेसमेंट है कि इसका ग्राउंड पे कोई रेजोनेंस नहीं है. अनलाइक इफ यू कंपेयर इट विद द नीट पेपर लीक इशू when they were demanding resignation of education minister Dharmendra Pradhan, that was actually resonating with the youth of the country, also with the unemployed. But on this issue, they are saying that it does not have any resonance on the ground. They have seen it in Bihar, where first time the SIR was implemented in Bihar. And you recall Rahul Gandhi took out a yatra against that whole exercise. Despite that, NDA won by a thumping majority in Bihar. So they are saying that if opposition parties tries to make it, it may be for academic discussion and all, but as far as the voters are concerned, common men are concerned, it does not have any resonance on the ground. Second point, they are saying that as far as the issue is there, they acknowledge that the issue is there, of course, because there are differences among the three election commissioners, but they are saying it's mainly because of the ego tussle, what they call it, ego tussle, because all of them are at the seniority level, at the same level, they have the same experience in the administration, and they hold the same post. So now it's just a question of who is first among the equal. Mr. Gyanesh Kumar is first among the equal. He has taken certain decisions, but of course, they acknowledge that, yes, there were differences of opinion. That's why these protests were registered. But now a course correction has been made by the Election Commission.
0: Okay, so that has addressed the issue. So Vinod ji, kya ek tarike se chink in the armor ye bhi tha ki jab all party meeting hui, then key parties were not present. Aam Aadmi Party wasn't there, Akhilesh Yadav himself wasn't present there, DMK had boycotted it as well. So government ko lag raha hai ki bhai unke paas wriggle room hai, itna zyada resonance nahi hone wala hai, opposition khud united nahi hai.
6: Nahi, this was the meeting of the India Alliance, not all opposition meeting. Aur DMK or Aam Aadmi Party, they are not the part of the India Alliance.
0: No, but DMK was a part of the
6: India Alliance. Was. Even Aam Aadmi Party was the part. Ab to nahi hai na. Na unko bulaya gaya, na wo aaye. Akhilesh ji ka zarur hai ki wo bade Congress ke aur Mamta ji ke baad agar sabse active aur India Alliance mein koi hai to Akhilesh ji hai. Ab wo nahi aaye us din Ram Gopal ji ka aur Nathwani sahab ka jo hai wo Dhanraj ji ka nomination kara rahe the usi time mein aur usi time mein wo press conference bhi unki hui. तो वो आ सकते थे. अच्छा, उन्होंने भेजा भी, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया. लेकिन जैसे अखिलेश जी हों या रामगोपाल जी हों या डिंपल हों, इन तीनों में से कोई होता,
0: उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जैसा अखिलेश जी कहते कि इसका कुछ खास
6: नहीं, है नहीं तो क्यों? वो उनका वो मैसेजिंग यूपी को लेके है. वो जो रायबरेली से, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि रायबरेली से यात्रा शुरू करना, उनका सीधा सीधा ये है कि उनका फोकस यूपी है. वो इस इशू को ज्वाइन भी करे रहेंगे लेकिन इसमें लीड नहीं लेंगे वो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो इसमें फंस जाएं और डाइवर्ट हो जाएं उनके सारे यूपी के इश्यूज, जो गलती तेजस्वी से हो गई थी बिहार में.
7: तो राइट. और उन्हें पद्मजा जी, मुझे बताया गया कि टीएमसी के एक सोर्स ने बताया कि अभिषेक बैनर्जी ने अखिलेश यादव से कुछ अपने कंसर्न साझा किए जो पश्चिम बंगाल में उनके मुताबिक हुए चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से जो टीएमसी आरोप लगाती है. तो सोर्सेज ने बताया कि अखिलेश यादव ने अभिषेक बैनर्जी को कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, यूपी में ज्यादा वोट बीजेपी के कटे हैं. तो ये सुनकर के अभिषेक बैनर्जी को हैरानी हुई कि हम तो इनके प्रति चिंता जता रहे, ये निश्चिंत हैं. तो एक ये भी कॉन्टेक्स्ट है. और जो मीटिंग में अखिलेश यादव का ना आना था, मुझे बताया गया कि अखिलेश यादव ने ये मैसेज कन्वे किया था कि मैं 2 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, इसके बाद में मीटिंग ज्वाइन कर सकता हूं. वो एक वर्चुअल जुड़ने के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी थी उनके एंड पर, लेकिन फिर उन्हें ये बताया गया कि नहीं, हम मीटिंग ही 2 बजे तक ख़त्म कर रहे हैं, 2 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. तो कोशिश थी अखिलेश यादव की कि विंडो निकाला जाए, लेकिन फिर वो हो नहीं सका.
0: यू नो, यू टॉक अबाउट द विंडो, बट ओम प्रकाश राजभर, ही टुक अ स्वाइप एंड ही सेड कि भाई नॉमिनेशन तो 6 तारीख तक चल रहा है, अगर नॉमिनेशन ही कराना था तो आप 6 तारीख पे कभी भी करा सकते हो. क्या जरूरत थी भूपेन?
5: यहाँ तो कोई मुहूर्त का भी चक्कर नहीं है. ये तो मुहूर्त भी नहीं मानते हैं ना, उसमें क्या है, तो कुछ भी किसी भी दिन निकल लेते
0: हैं.
8: व्हेन यू आर डीलिंग विद समवन लाइक धनराज नथवानी, एज द नेम सजेस्ट्स, धनराज, राइट, देन एवरीथिंग एल्स पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस. I think the optics of that move is something which we can look at closely. But I think the initial question which you raised, which was about the Election Commission, I think the damage that had to be inflicted on the government and on the sanctity of the Election Commission has already been inflicted. In fact, I would go to the extent of saying that the Chief Election Commissioner himself, if you look at today's reportage which has come out in the same publication, if chief electoral officers across the country are being told today that please go back to all those voters whose names have been deleted from SIR and give them another chance and re-enroll them and take all kinds of precautions. Well, hello, you should have thought of all this earlier, not when the cart is already bolted. Elections are done, dusted in many states. What recourse do those voters have? So I think to that extent, the Chief Election Commissioner and the government would like to believe that with this, what Akhilesh says is course correction, should it end with course correction? Should there be no further accountability?
0: No, but we are talking about pure politics over here. Yeah. The CEC's image may be dented, but is there going to be a political dent to the government question.
7: I'll give you
0: because look, the political debate is today, the Congress is saying the PM must step down.
8: I'll give you a brutally political, brutally honest answer, Padmaja. In our country.
6: Brutally political and honest.
8: Brutally honest answer. Padmaja, in our country, look, saving democracy was never a sexy subject. It does not get converted into that kind of chutzpah as a corruption scandal may, or as a personal impropriety case may. But I think this time around what we have seen, that a large chunk of the saving democracy, at least on social media, Instagram, if all government ministers and all BJP leaders have been told that please, raise your profile on Instagram. Well, where is the biggest buzz which is coming up against the Chief Election Commissioner? All on Instagram. Now the question is that, is that Instagram buzz going to convert itself into votes or not? Well, we have to wait.
0: Well, the biggest Instagram buzz as of today is about Captain Smit Machar, more than anything else, more than what is happening at Jantar Mantar or what is happening at Azad Maidan or Shivaji Park. It is about Smit Machar. But what this has done is bring all of the opposition together. And a very interesting take on this was given by Adhir Ranjan Chaudhary. Because remember when we saw that image of Mamata Banerjee and Sonia Gandhi side by side at the all party meeting, comes this statement from Adhir Ranjan Chaudhary. Let's listen in.
9: समय आ गए हैं, पुराने दिन को भूल जाओ, नए सिरे से करो, क्योंकि हिंदुस्तान की संविधान, लोकतंत्र, सब कुछ खतरे में है, सब हम मानते हैं। इसके साथ साथ मैं भी एक सलाह देते हैं ममता बनर्जी को, और मांग भी करते हैं हमारे हाईकमान से भी, कि क्यों ना ममता बनर्जी सीधे कांग्रेस में शामिल हो जाए, इधर उधर की बात ना करते हुए उनकी पार्टी के जितने एमपी है, जितने एमएलए है अभी जो बचे हुए हैं, सबको लेकर क्यों ना कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए।
0: एवरीवन वांट्स टू जॉइन आईएनडीआई। अधीर रंजन चौधरी इज सेइंग ममता बनर्जी शुड मर्ज हर पार्टी। रिजु दत्ता ऑफ द डेमोक्रेटिक टीएमसी इज सेइंग दैट वी आर विलिंग टू जॉइन आईएनडीआई। असदुद्दीन ओवैसी इज सेइंग वी आर आल्सो विलिंग टू जॉइन। बट ऑल ऑफ दिस असाइड, कुछ सच में ऐसा होने वाला है, कुछ मर्जर वर्जर? कुछ बहुत टाइम से ये कहा जा रहा है कभी कि एनसीपी मर्ज हो जाएगी, एनसीपी शरद पवार, कभी टीएमसी मर्ज हो जाएगी।
6: जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2019 में इलेक्शंस के बाद एक बड़ी सीरियस कोशिश राहुल गांधी ने की थी शरद पवार से मिलके टू बिगिन विद एनसीपी, कि एनसीपी का पहले मर्जर हो, और एनसीपी का मर्जर अगर सक्सेसफुल हो जाए तो फिर हम इसको और एक्सटेंड करें जगन रेड्डी एंड ये सब के साथ। लेकिन वो बात बनी नहीं। एनसीपी की तरफ से भी उस पर रिजेंटमेंट था कि नहीं नहीं, हमको अपनी अलग एंटिटी नहीं ख़त्म करनी, और कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के लीडर्स थे उन्होंने भी इसको अपोज किया, इस मूव को। उसके बाद अभी 4 जून के बाद बहुत तेज़ी हुआ कि टीएमसी मर्ज कर दे, उसको अपने एमपीज बचाने हैं तो एक ही रास्ता है, कांग्रेस तुरंत मर्ज कर दे, 129 हो जाएंगे तो। और वो सोनिया गांधी और ममता की जो मीटिंग हुई उसमें भी कहा जाता है कि ये बात उठी, और ममता को ऑफर भी किया गया वाइस प्रेसिडेंटशिप, ये सोर्सेस से, मतलब कोई ऑफिशियल नहीं था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम क्या है कि जिसने एक बार अपना इंडिपेंडेंट, क्या कहते हैं, सत्ता का सुख ले लिया, कंट्रोल, वो कैसे मर्ज करे अपने को किसी दूसरी आइडेंटिटी में? ममता बनर्जी आज चाहे वो उनके पार्टी के पास 5-6 एमपीस बचे हों, 20-25 एमएलएस बचे हों, लेकिन वो हैं तो उनके।
0: होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन हार्ट। बट उस मीटिंग की बात हो रही है, आई वांट टू क्विकली चेक विद जयनेंद्र आल्सो, बिकॉज़ उसमें मीटिंग में हुआ क्या क्या उसको लेके बहुत बात है कि नीतीश जी को गद्दार बोला गया, जेडीयू रिएक्टेड वेरी वायलेंटली टू दैट, द फैक्ट अपेरेंटली राहुल गांधी टोल्ड द कांग्रेसमैन कि मोदी जी को भरोसा है कि हम सत्ता में आने वाले हैं, मेरे खुद के पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं है। जयनेंद्र
7: बिल्कुल, देखिए
0: कौन ये पार्टी के लोग जो कि राहुल गांधी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं ऐसे?
7: देखिए एग्जैक्टली दो मीटिंग्स हुई हैं, एक तो CWC की मीटिंग हुई है और दूसरी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है। जो आपने पूछा अखिलेश जी से कि क्या ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे, अखिलेश जी ने सीधा कहा नहीं, क्योंकि सरकार को नहीं लगता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। खुद राहुल गांधी को भी नहीं लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि तभी उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कहा कि आप लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, लेकिन 80% लोग अब ये मानने लगे हैं, ये जो पूरा वोट चोरी का, उनके हिसाब से जो वोट चोरी का मुद्दा है, उन्होंने खुद कहा कि पहले 20% लोग मानते थे शुरू में, अब 80% लोग मान रहे हैं, आप लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने एक बार मुझसे कहा था कि जब हम जाएंगे तो आप ही आएंगे, मतलब वो एक शायद CBI हेड के सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी या CEC के ही सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट या फिर CBI हेड के अपॉइंटमेंट।
0: उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई सरकार के अंदर के लोग हमें इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं,
7: वो तो खुलेआम कह रहे हैं, वो
0: तो अरविंद केजरीवाल भी कहते थे कि रॉ के लोग उनको इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं।
7: ये तो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं, जो एक हम कह सकते हैं परसेप्शन बैटल जीतने के लिए ये सब बातें कही जाती हैं। लेकिन हाँ, इतने सालों से कांग्रेस सत्ता में,
0: राहुल गांधी को अब सीरियसली लगता है कि मोदी सरकार वीक हो गई है?
7: हाँ देखिए, ये तो मंच से भी और पार्टी के अंदर की मीटिंग्स में भी, वर्किंग कमेटी के मीटिंग में भी और इंडिया अलायंस की मीटिंग में भी पंजा उन्होंने कहा कि PM हिले हुए हैं और ये समय है, हम सबको एकजुट होकर के काम करना चाहिए। CWC में भी उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि आप लोग मेरी बात नहीं मानते, आप सबको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, वक्त आ गया।
0: पर अगर PM हिले हुए तो फिर CEC का इस्तीफा ले लेते ना?
7: हाँ वो ठीक, और मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस में एक
6: हिले हैं, पूरी तरह पूरी तरह
10: नहीं, उतना नहीं हिले हैं वो,
0: एक धक्का और दो टाइप का अभी सिचुएशन
10: हिले हैं कि जो आप प्रोटेस्ट आजकल देखती हैं, जो शब्दावली आप देखती हैं, जिस प्रकार की भाषा आप देखती हैं, ये सब, आई मीन वी हैव नॉट सीन ऑल दिस अगेंस्ट मोदी, राइट? आई मीन मोदी वॉज बिगर देन द BJP, नाउ द वे वेदर इट्स लीडर्स you know are coming out openly challenging him, at the last that we saw something like this was when the Rafale deal was at its peak, and then of course 2019 happened and we all saw what happened. I think the only thing that has changed, I don't think that Modi is not in control of the situation, if that is what you're trying to ask. Modi is certainly in control of the situation. The only thing that has changed is that the opposition is consistently getting hold of newer hooks to target the Prime Minister directly, which they were not in a position to do so earlier. That's a fundamental.
0: And doing it more aggressively. Let's shift focus now to what is happening in Punjab, because the chief of the Congress in the state, Amrinder Raja Waring, has stepped down. By the way, the official announcement wasn't made, but he changed his Twitter bio to former president, former PPCC president on his own. And this has happened just months ahead of the assembly election in the state. Now, the key question remains, who will replace Waring at a time when the campaign heat has started to rise in the state? The party will have to strike a balance now, not just between the various camps within the Congress in Punjab, but also the various social groups in the state. While Waring came to Delhi to meet Rahul Gandhi, the BJP naturally is not losing this opportunity to take a swipe at the infighting.
11: Formally resignation diya, aur unhone bahut pyar diya, aur Punjab ke bare mein kya halaat hai aur kis prakar se kya ho raha hai aur kya hame karna chahiye. राहुल जी ने जानकारी ली
12: और राजे पटिंग तो इस्तीफा ले लिया कल हुण कोई नवा आऊगा ओदे पिछे लड़नगे भी इहनू लाउणा है कांग्रेस वाले पंजाब वास्ते कदे कट्ठे नहीं हो सकते हाँ आपदे प्रधान नू लाउण वास्ते सारे कट्ठे हो जांदे ने भी सारे कट्ठे हैं जी.
0: ओके सो लेट मी आस्क जैनेंद्र बिकॉज ही स्पोकन टू Waring एट लेंथ. Who is going to become the next? First, tell us, why did he go? Why was he removed?
7: देखिए पंजा, ये उन्हें उनका जाना जून में ही डिसाइडेड हो गया था, जब चन्नी बाजवा और सारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो दिल्ली में उन्होंने कन्वे किया कि हम राजा की लीडरशिप में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे. इसके बाद अजय माकन की कमेटी बनाई गई. हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि चन्नी को हमें प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप को लगा कि पिछली बार चन्नी को बनाने की वजह से दलित वर्सेज जटसिक का एक इक्वेशन बन गया था. चन्नी खुद सीएम रहते अपने दो सीटों से चुनाव हार गए थे, तो चन्नी के साथ जाना सेफ नहीं. चन्नी को कैंपेन कमेटी चीफ बनाते हैं और सिंगला को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, विजय इंदर सिंगला को. ये बात जब आखिरी मोमेंट में कन्वे की गई केसी वेणुगोपाल के द्वारा चन्नी को और अदर सीनियर लीडर्स को, तो बताया जाता है कि चन्नी ने वीटो कर दिया और उन्होंने साफ कहा कि नहीं, सिंगला को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अध्यक्ष मुझे बनाइए. जब ये बात राहुल गांधी को कन्वे की गई तो उन्होंने कहा कि फिर स्टेटस को रखते हैं, कोई चेंज नहीं होगा. और इसके बाद स्थिति और हाथ से बिगड़ी, इतनी बिगड़ गई कि भूपेश बघेल जो अंपायर की भूमिका में थे, इंचार्ज थे, उनका विरोध होने लगा,
0: अंपायर को ही रेड कार्ड कर दिया.
7: और एग्जैक्टली और फिर उनके
10: तो मर्सिडीज गाड़ी भी मिली गई थी.
0: कहां
10: ऐसी चर्चा थी कि भूपेश बघेल को वो जब पंजाब के जब वो इंचार्ज बनाए गए थे तो उनको संभवतः उन्हीं के जो जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिनको उन्होंने एम्पायर करना था, शायद उन्हीं से उनको एक मर्सिडीज गाड़ी भी मिल गई थी. एंड दैट हैपेंस टू बी वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई हिज न्यूट्रलिटी केम अंडर क्वेश्चन.
0: बट वेरी इंटरेस्टिंग, आई हैव टू से दैट भूपेंद्र ऑलमोस्ट 3 weeks अगो हैड प्रेडिक्टेड दैट Waring इज गोइंग टू गो एज द चीफ ऑफ द कांग्रेस इन पंजाब. सो नाउ ऑल्सो टेल अस हु इज
10: समटाइम्स समटाइम्स यू गेट इट राइट
0: हु इज गोइंग टू बिकम हु इज गोइंग टू बिकम द न्यू.
10: सो द पॉलिटिकल लॉजिक दैट आई हैव बीन गिवन टू अंडरस्टैंड इज दिस, दैट the Congress high command believes that it's best if you make a Hindu face, a non-Sikh face, you make that Hindu face the Pradesh Congress president. The feeling is that if you have that logic, then who will be the chief minister should that situation arise, which is bound to be, let's say, a Sikh person? That question remains open. You create a mechanism much like what was tried in Kerala, where all your Lok Sabha faces are given the responsibility of campaigning. They're not asked to campaign, they're not asked to contest. So, you know, Waring is out of the race, Sukhinder Randhawa then is out of the race, all of whom are looking at themselves as potential, you know, chief ministerial candidates or people with who are in a position to control the levers. My own understanding is this, that I think none of these names that we're talking about, I spoke to Mr. Singla some time back, and I was asking him if he had been sounded out and he was on the campaign trail. The sense I get by speaking to, from Mr. Bajwa to Mr. Randhawa to Mr. Singla, is that there is one more card which is still to play out. And that card is a potential return of Captain Amrinder Singh to the Congress party. Now, I'm not suggesting that Amrinder Singh is going to be the chief ministerial candidate, but the potential of Amrinder Singh coming back to the Congress party is very, very high. And once that happens, if that were to happen, maybe by the end of the year, I think this question that you're raising, that who will be the chief ministerial candidate, will get answered then.
0: And who will be the state president?
10: I think state president at this stage is a toss-up between Mr. Singla and Pargat Singh.
0: Okay.
10: His name, Pargat Singh's name has also been
6: He's a Jat Sikh. एंड ए फॉर्मर हॉकी कैप्टन नोन इन इंटायर पंजाब इज ए पैन पंजाब फेस और सबसे बड़ी बात यह है कि गुटबाजी में नहीं है वो ही इज नॉट विद द चन्नी नॉर नाइदर विद द चन्नी नॉर विद द राजा
0: क्योंकि विजय सिंधिया से ये कहा जा रहा है कि आप एक हिंदू को बना दीजिए तो फिर एक जट सिख जो है आपके सीएम फेस हो जाएंगे कैंपेन कमेटी के चीफ आपके ऑलरेडी चन्नी हैं जो कि दलित
6: पंजाब में अगर आप जट सिख को नहीं बनाएंगे तो आप अकालीज के लिए आप खुला मैदान छोड़ देंगे जट सिख बूट के लिए नंबर एक और दूसरा ये है कि आपने सुनील जाखड़ को तब बनाया था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे और वो फेस थे पार्टी का वो जट सिख थे इसलिए सुनील जाखड़ और सुनील जाखड़ ही हिमसेल्फ इज ए जाट और उनका कद भी बड़ा था सिंगला इज ए अर्बन फेस उसको पंजाब के गाँव में एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग इसलिए बनाना तो इनको पड़ेगा जट ही लॉजिकली बाकी किसी को बना दे कांग्रेस पार्टी
7: ऐड करना चाहता हूँ कि प्रगट सिंह वाकई में उन पोजिशनिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है लेकिन वो अकाली दल से आए हैं और कांग्रेस लीडरशिप के करीब नहीं है उनके कम वकील हैं राहुल गांधी के आसपास तो इस वजह से शायद उनकी दावेदारी और एक ये लॉजिक भी है कि जट सिख को हटाकर जट सिख को बनाने से आप गेन क्या करते हैं तो ऐसे में सिंगला जिस एरिया से आते
0: हैं गया क्या वर्डिंग के खिलाफ क्या फैक्टर गए
7: मैं आपसे वही कह रहा था वर्डिंग सब सीनियर लीडर्स के की जो के आंखों के काटे काटे बन गए थे इनकी जो कार्यशैली थी वो इन सब लोगों को असहज कर रही थी
0: तो हरी, और एक हरी कोई कांटा बन जाता है ना जब कैप्टन थे तो वो कांटा बने हुए
7: एक
0: थे
7: जो बुनियादी
0: जब वरिंग थे वो कांटा बन गए सिद्धू कांटा बन गए कौन कांटा नहीं
7: बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब की पॉलिटिक्स में जो अकाली दल कल्चर है कि जो पिछला उम्मीदवार होता है पिछले चुनाव का वो हल्का इंचार्ज अकाली दल में बनाया जाता है वो कल्चर सभी पार्टियों में है तो कांग्रेस के भी जो पिछले चुनाव के हारे हुए उम्मीदवार थे वो अपने आप को अपने इलाके का अपने विधानसभा का इंचार्ज मान के चल रहे थे जब राजा वर्डिंग प्रदेश अध्यक्ष बने वो यूथ कांग्रेस बैकग्राउंड से आए हुए उनके अपने नेता हर इलाके में है उन्होंने अपने करीबियों को बढ़ाना शुरू किया उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाया पुराने उम्मीदवारों को लगा कि शायद हमारी टिकट नहीं मिले इसकी वजह से उन्होंने राजा के खिलाफ एक लॉबिंग शुरू की और फाइनली वो राजा का विकेट लेकर के माने
0: बिकॉज यू नो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एज एन आउटसाइडर व्हेन आई लुक एट राजा वर्डिंग इन द लास्ट 5 years आफ्टर द आम आदमी पार्टी केम टू पावर चरणजीत सिंह चन्नी वाजंट इवन देयर ही वाजंट इवन इन पंजाब आई रिमेंबर ही वेंट अवे टू राइट हिज पीएचडी और समथिंग
6: ही वेंट अवे टू कनाडा
0: ही वेंट अवे टू कनाडा एंड देन ही रोट अ पेपर अपेरेंटली अबाउट हाउ द कांग्रेस इज नॉट डूइंग वेल इन पंजाब एंड देन यू कम बैक यू लूज बोथ योर सीट्स एंड देन यू गेट योर वे
13: ही गेट्स अ वीटो पावर
0: एंड Waring is the person who was there, who was carrying out the campaign, who was doing all these sabhas, who was doing Bharat Jodo Yatra, and then 4 months before the election, you kick him out.
13: Should not forget the Lok Sabha election results, where the Congress party under him won 7 Lok Sabha seats. And Aam Aadmi party was reduced to just 3.
0: Yeah.
13: And interestingly, you talked about Kanta. So I'm saying, Kanta se Kanta nikalne ka hai to hai ye Congress party mein. राजा को हटा के फिर एक राजा को हटाया दो राजा कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया उसके बाद अब राजा इनको हटा दिया और तब आप राजा को हटा के चन्नी को लेके आए थे जो दोनों अपनी विधानसभा सीट हार गए और जो राजा आपने आपको 7 लोकसभा सीटें जितवाई आप उनको हटा रहे हैं फिर से तो क्या कांग्रेस पार्टी ने फैसला सही किया इस पर भी एक डिस्कशन होना चाहिए
7: बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे राजा
0: और आपने कैप्टन को हटा करके नवजोत सिंह सिद्धू के कहने पे कैप्टन को हटाया फिर सिद्धू भी चले गए कैप्टन भी चले गए फिर आपको क्या
2: कांग्रेस 2022 हारी
0: नहीं और क्योंकि काटे की बात हो रही है वांट टू एक्चुअली प्ले आउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक दैट भगवंत मान हैड ऑन दिस एंटायर फाइटिंग दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन द कांग्रेस पार्टी
12: और राजे बड़िंग तो इस्तीफा ले लिया कल हुण कोई नवा आऊगा ओदे पिछे लड़नगे भी इहनू लाउणा है कांग्रेस वाले पंजाब वास्ते कदे इकट्ठे नहीं हो सकदे हां आपदे प्रधान नूं लाउण वास्ते सारे इकट्ठे हो जांदे ने भी सारे इकट्ठे आ जी
0: So Bhagwan Mann has predicted that now everyone is going to get after the life of whoever is going to be the next BPCC president. But very quickly, Akhilesh, I want to ask, any chance that Raja Waring, any talks happening? Because there seems to be a great affinity that the BJP has for ex-congressmen, right? From Vinod Jakhar to Captain, maybe to this new Raja.
13: Not with him, but maybe with Channi. There's a buzz that Channi is in talks with the BJP, but I don't know whether it's true or not. Hmm. But it's just as... small buzz there but BJP is very keenly watching what's happening within the Congress party what my sources in the BJP are telling me that there is a view within the party that now we should not delay this alliance with the Akali Dal anymore
0: it's happening they are going to
13: they are saying it should happen
7: yes.
13: but they it's feel happening. That it should happen because the internal survey of the BJP says that if BJP and Akali Dal comes together they are going to win 80 seats which is a big number in the assembly. Well, this is the internal survey saying.
0: Yeah. And 80 almost as much as Aam Aadmi Party. Just
13: they had won 93, I think. Yes. So,
8: yeah. See, but all this survey and all this deliberation of the BJP is taking place or was taking place at a time when the Congress was looking as a house completely divided. Because all these leaders that we're talking about, everybody was looking for how many seats will they be able to get for the supporters. If the Congress gets its act right, if the Congress does manage to settle, and again, I understand that this decision of who's going to be the next party president is going to be announced within the next 48 hours. Now, if that decision is announced, if the Congress, you know, makes it all guns blazing, the Congress is clearly going to be the front runner. In this election, will the BJP think in terms of joining hands with Charanjit Singh Channi, you know, doing like a Raghav Chadda kind of an episode with him? Highly unlikely at this stage. If the Channi episode had to happen, may well have happened earlier.

0: is happening in the state of Punjab as well. It's not as if there's no information, but it's just that when the bureaucracy is not completely in your control, when the state bureaucracy is looking one eye towards the center and one eye towards the state, what you get is this classic unfortunate cocktail which is unfolding in Punjab.
1: Akhilesh ji, for the home minister to say ki main ek hi mudde par chunav ladne wala hu 2029, he set himself that deadline. क्या बीजेपी के सर्वे में कुछ ऐसा निकल करके आया है कि यही मुद्दा उनको जिता सकता
2: बिल्कुल,
1: है?
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये बीजेपी के सर्वे में निकल करके आया है कि तीन मुद्दे हैं, जैसे भूपेंद्र ने कहा बिल्कुल सही है, तीनों आपस में लिंक्ड हैं, क्राइम, करप्शन एंड चिट्टा ड्रग्स. सो ऑल दिस ट्रिपल सी, ये बीजेपी का मेन प्लैंक रहेगा. और वे कह रहे हैं कि बींग द बॉर्डर स्टेट इज वेरी सेंसिटिव स्टेट, एंड दे ऑल्सो सेइंग दैट द रिवाइवल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज इन पंजाब इज वेरी वरिंग. And that's why now the central government has to intervene in this matter. That's why BJP is serious. And when Namesh Shah talks about a deadline, people take him seriously, because we have seen कि Maoism के बारे में जब उन्होंने एक deadline दिया था कि 31st March 2026 तक खत्म कर देंगे, तो वो करके दिखा दिया उन्होंने. तो now when he is saying that by 31st December 2029 we will ensure that there is no drugs in Punjab, so people would like to believe him. BJP feels that this is an issue on which they can go and seek their votes. But it is unfortunate, because in the previous election also, in the last assembly election, Aam Aadmi Party also made it a big issue.
1: Yeah.
2: This was their main issue, that they will stop drugs in Punjab. And now again, after 5 years, we are talking the same thing.
1: And especially in a border state, in a state where you have a large number of recruitments, remember, taking place for our army, for our BSF. If you've got an entire generation of young people being lost to drugs, farming community, you know, you've got entire areas where there are no young men, able-bodied men left anymore. So this is, I think, a very real issue, and clearly one that is having a resonance. Aapko lagta hai iska political impact us tarike ka ho raha
3: hai? Nahi, bilkul political issue ka. Nahi, drugs ke issue ka political impact ho sakta hai. Bahut, kyunki ek to bordering state hai. Sare drug jo trade hai aapka, wo Afghanistan se leke Pakistan aur Pakistan se Punjab, via Punjab yahi route hai jo aur usse pure Hindustan mein jata hai. Lekin samasya ye hai ki seriously fight karne ka, अगर आप उन्हीं अकाली से अलाइंस करेंगे जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार आप देख ही रहे हैं.
1: अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अमित शाह ने अपनी पूरी रैली में अकाली दल का मेंशन भी नहीं किया. उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि इन्होंने ड्रग्स में झोंक दिया, आम आदमी पार्टी ने झोंक दिया, कांग्रेस ने ये किया,
3: सरकार
1: अकाली दल का एक बार मेंशन नहीं.
3: नहीं तो कैसे उसमें, तो खुद
1: अखिलेश जी कैसे होगा, आप अलायंस अगर करेंगे तो ड्रग्स के इशू पे आप कैसे लड़ेंगे?
2: इस इशू पे तो 5 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है ना. अगर मान लीजिए कुछ किया होता अकाली दल ने, तो कर दिया होता अंदर सबको.
1: ओके, तो उनको नहीं लगता कि अब वो बैगेज जो अकाली दल का है.
2: और जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया है, ये जो अमित शाह की रैली में कहीं भी अकाली दल का नाम नहीं लिया उन्होंने, तो ये अपने आप में इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और अकाली दल का अलायंस जो है वो ऑलमोस्ट.
1: जबकि सुखबीर बादल आकर के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, आई थिंक एक दो तीन महीने पहले सुखबीर बादल
2: चुके हैं. उन्होंने कहा कि हम विमेन रिजर्वेशन बिल पर, डिलिमिटेशन बिल पर सरकार का सपोर्ट भी करेंगे. उनका एक ही, हालांकि एक ही एमपी है, पर उन्होंने सपोर्ट किया.
0: बट देयर इज द ओनली थिंग दैट आई मे लाइक टू ऐड, प्लीज बेयर इन माइंड दैट देयर इज अ, इन द बीजेपी प्लेबुक देयर इज अ थर्ड फैक्टर आल्सो, व्हिच इज द 7 राज्यसभा एमपीज ऑफ द आम आदमी पार्टी. Right, from and Raghav Chadha is no novice, right? And there is Sandeep Pathak, who was his backroom boy. So if you tie up with the Akali Dal, what is going to happen to this lot of imports from the Aam Aadmi Party to the BJP is also something.
1: Sir, dal badalta hai to dil bhi badal jata hai, usme kaun si badi baat hai. Are Yusuf Pathan aakar ke agar baith sakte hain NDA ki,
2: they will help BJP, they will help BJP in poaching Aam Aadmi Party MLAs and leaders,
0: perhaps
2: other leaders.
0: But Bikram Majithia, you know, the brother-in-law of Sukhbir Badal, who was supposed to be the real instigator at one point of time, allegedly, if I may say so, of this entire drug abuse in the state of Punjab. So Bikram Majithia, Sukhbir Badal, BJP, all on the same side. Raghav Chadha, Sandeep Pathak and all the other lot who were campaigning against the Akali Dal earlier and now campaigning against their own party, also on the same side. You know, it's one thing for the Prime Minister in Maharashtra to speak about Sunil Tatkar and Chagan Bhujbal ki inhone kitna inhone irrigation scam ki aur baad mein unse jaake haath mila lena. Lekin drug abuse, you know, is a very different story. Punjab is not as big a state as a state of Maharashtra.
4: Ye balance bithana,
0: does it have a potential?
1: Balance bithana mushkil hai.
0: That's all I'm trying to say.
4: Mushkil hua ki ek taraf to aap Amit Shah ki jo strong chhavi hai ki naxalwad khatam kiya, 370 khatam kiya. Main BJP Punjab ke jitne bhi content dekh raha hu, reels wagera dekh raha hu, sab pe chehra Modi se zyada Amit Shah hai aur unke wo sansad ke bhashan hai. To us image ke sath aap jab jate hain aur fir aap Akali Dal jaisa Bhupen sir keh rahe hain, to ye balance bithana bahut
1: dilchasp hoga. Sir, the day I saw Abu Tahir Khan and Yusuf Pathan of the TMC sitting along with the NDA, I believe anything is possible in Indian politics.
3: Anything is possible, but log kaise lete hain isko, ye important hoga na.
1: That is very important, and I think इन द

0: यादव ने राहुल गांधी को फोन लगा और बोला बॉस मैं धनराज नथवानी को ले रहा हूं, तो आप जो है उनकी कंपनी के मालिक की आप फोटो हटा दीजिए और उनके मालिक की फोटो।
1: सहमति से हुआ आप कह रहे हैं?
0: मेरा तो मानना यही है।
1: चलिए राज्यसभा की बात,
0: प्रैग्मैटिक पॉलिटिक्स है,
1: लेट्स अलोंग विद उत्तर प्रदेश, लेट्स टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द राज्यसभा। एनी न्यू नेम्स अखिलेश जी? हु इज, यू नो, समाजवादी पार्टी हैज डिक्लेयर्ड टू, वन रिमेन सस्पेंस, बीजेपी हैज अपेरेंटली टेकन 9 फॉर्म्स, हु आर दीज 9 पीपल?
2: देखो सात तो पक्का है कि उनके जीतने जीतने हम लोगों ने इसकी बात की थी,
1: आठवें
2: पे कॉन्टेस्ट होगा, नाइन तो मुझे लगता है कि ऐसे डराने के लिए ले लिया होगा क्योंकि इतने लोग है नहीं,
1: दस ही ले लेते
2: हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश जी जब ये कहा ना कि बीजेपी के एमएलए हमारी तरफ क्रॉस वोट करेंगे, तो बीजेपी कह रही है कि हमारे पास भी ऐसे समाजवादी पार्टी के हैं जो क्रॉस वोट करेंगे, तो इसलिए दावे करने के लिए किया है। लेकिन सेवन तो सीरियस है, बीजेपी के होने ही है, आठवें पे निश्चित तौर पर बीजेपी कॉन्टेस्ट करेगी और आठवां भी बीजेपी का जीतना ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, बिकॉज बीजेपी को दो या तीन ही एक्स्ट्रा वोट चाहिए जो उनको आराम से मैनेज।
1: नाम बताइए ना कौन कौन से हैं।
2: देखिए नाम तो हमने पिछली बार भी डिस्कस किए,
1: दो नाम थे ना,
2: स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी, इनका नाम सुनने में आ ही रहा है, हरदीप पुरी फिर से मिल सकता है उनको।
1: अच्छा,
2: ये क्योंकि उनको अगर कंटिन्यू करना है एज ए मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर,
0: वरुण गांधी का
2: पंजाब का, वरुण गांधी का नाम नहीं आ रहा है, आया था शुरू में लेकिन उस तरह से अब
0: चला था।
2: तो हरदीप पुरी को अगर कंटिन्यू करना है पंजाब में इलेक्शन है,
1: संदीप सिंह, कुमार विश्वास,
2: कुमार विश्वास का नाम लखनऊ से कुछ लोगों ने फ्लोट किया, लेकिन जो लिस्ट आई है लखनऊ से उसमें शायद उनका नाम नहीं है। अगर यहाँ से सेंट्रल लीडरशिप लास्ट पे इंसर्ट करे वो अलग बात है।
1: संजीव बालियान,
2: संजीव बालियान एक सीरियस नाम है,
3: संजीव का हो सकता है,
2: योगी आदित्यनाथ तैयार होंगे उसके लिए, नहीं होंगे ये वो एक देखने की बात होगी। पर इसमें बीजेपी की कोशिश ये होगी कि ब्राह्मण को दिया जाए, नुमाइंदगी दी जाए, ओबीसी पे खास तौर से फोकस बीजेपी का रहे।
3: ब्राह्मण हरीश द्विवेदी तो,
2: हरीश द्विवेदी तो ही है, और भी एक आध कोई और भी हो सकते हैं, कुमार विश्वास का जैसे आप नाम ले रहे हैं वो भी ब्राह्मण चेहरा एक हो सकते हैं, पर उनका भी मुझे डाउटफुल है कुमार विश्वास का।
1: क्यों?
2: क्योंकि एक तो बाहर के हैं, पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, पार्टी को अगर देना हो तो अपने लोगों को देगी, कम से कम चुनाव जब सिर पर है तब, क्योंकि अगर आप कुमार विश्वास को देते हो तो बाकी जो ब्राह्मण दावेदार हैं पार्टी के भीतर वो
1: स्टेट सर्विस कमीशन राजस्थान में, व्हेन अशोक गहलोत वाज द चीफ मिनिस्टर, हिज वाइफ वाज अ
3: मेंबर ऑफ दैट।
0: कुछ लोगों से मैंने श्रीकांत शर्मा के बारे में भी सुना,
2: मथुरा के जो एमएलए हैं, नाम चल रहे हैं
0: ब्राह्मण,
1: बट श्रीकांत शर्मा इज ऑलरेडी एन एमएलए।
0: आई नो बट यू सी द सो यू टू देन यू टू गेट इनटू द डायनामिक्स ऑफ इट, हाउ डिड श्रीकांत शर्मा बिकम द मथुरा एमएलए, हुज एलिजेंस हैज ब्रॉट हिम दिस फार? इट वाज द होम मिनिस्टर, राइट? श्रीकांत शर्मा वॉज अ कैबिनेट मिनिस्टर, बाय द वे, इफ यू रिमेंबर, श्रीकांत शर्मा एंड सिद्धार्थनाथ सिंह प्रयागराज एमएलए वर द टू मिनिस्टर्स, बोथ ऑफ देम हैव बीन एमएलए सिंस देन। नाउ श्रीकांत शर्मा ऑल्सो वॉन्ट्स टू, ही इज बीन लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कम बैक टू, यू नो, टू दिल्ली पॉलिटिक्स, हिज प्रॉक्सिमिटी टू द होम मिनिस्टर इज वेल नोन, एंड आई हैव बीन हियरिंग हिज नेम इन सर्टन क्वार्टर्स।
1: सुरेश राणा, सत्यपाल सिंह, बोथ वेस्टर्न यूपी,
2: सीरियस है सुरेश राणा, बिकॉज एक राजपूत अगर आपको लाना है तो सुरेश राणा हो सकते हैं, राजवीर सिंह क्योंकि
3: तो सुरेश राणा हो सकते हैं,
2: कोशिश करें राजवीर, क्योंकि राजवीर चुनाव हार गए थे, अब कल्याण सिंह की लेगेसी तो बीजेपी को हमेशा चुनाव के पहले याद आती है, तो इसलिए बाबूजी के लिए भैया जो है राजू भैया वो उनका नाम चल रहा है, वैसे कई सारे नाम है।
1: और सत्यपाल सिंह आल्सो, बिकॉज़ आई थिंक ही वाज वेरी कट अप व्हेन द
2: डिनाइड टिकट,
3: एक वजह और
1: है, व्हेन द अलायंस हैपेंड बिटवीन आरएलडी,
3: एक वजह और है राजवीर सिंह के पक्ष में कि अखिलेश इज आइंग फॉर लोधी बूट्स, और वो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट है जो लोध वोट, कल्याण सिंह सीन में नहीं है, राजू भैया चुनाव हार गए हैं, तो अखिलेश जो रायबरेली यात्रा थी लोधी वर्सेस योगी जो नारा दिया था, तो बीजेपी इसलिए वो राजू भैया के पक्ष में बात जाती है।
2: एक्चुअली अखिलेश की जब बात करते हैं तो एक बात बोलना बहुत जरूरी है कि अखिलेश यादव ने अपने जो कोर वोटर हैं मुस्लिम यादव उनको ये कहा है, ऐसा सुनने में आया कि भाई आप लोगों को इस बार ज्यादा टिकट मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे ज्यादा टिकट किसको देना है, नॉन यादव ओबीसी को, ब्राह्मण्स को, नॉन जाट और दलित को, ताकि ये जो लोकसभा का फार्मूला था ना उसी फार्मूले को मैं असेंबली में रेप्लिकेट कर सकूं। भाई आपको बाद में सरकार बनेगी तो सरकार तो अपनी रहेगी ना, आपको बोर्ड में कॉर्पोरेशन में यहाँ एडजस्ट कर देंगे,
1: मतलब बेसिकली द चॉइसेस, डू यू वांट टू बी हैव योर एमएलएस और डू यू वांट टू हैव योर चीफ मिनिस्टर?
2: एग्जैक्टली,
1: सो अखिलेश यादव नीड्स टू बी चीफ मिनिस्टर। ज्ञानेंद्र बताइए, जनेंद्र बताइए, कुछ अंदर की बात बताइए, क्या राज्यसभा में क्या नाम है और तीसरी टिकट किसको मिल रही है समाजवादी पार्टी से?
4: नहीं देखिए, इसके बारे में मैं कोई गेस वर्क नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो नंबर्स हैं अखिलेश यादव के पास दो कांग्रेस का मिलाकर के, तो दो सीट तो आराम से निकलेगी, जो तीसरी सीट है उस पर टक्कर इसलिए है क्योंकि ज्यादा पीछे नहीं है ना, तो बीजेपी ज्यादा पीछे
3: बने रहेंगे,
4: हाँ हाँ, तो एक तो प्रदेश अध्यक्ष बन रही है और दूसरे जो है वो विधायक दल के नेता बन रहे हैं, वो बड़ी यूनिक बात है। दो ही विधायक है कांग्रेस के और एक विधायक जो भी विधायक दल के नेता है वो प्रदेश अध्यक्ष बन रही है, दूसरे विधायक विधायक दल के नेता बन रहे हैं, वो तो दोनों साथ ही रहेंगे। लेकिन ज्यादा पीछे भी अखिलेश और एक राजभर के कुछ एमएलए और आरएलडी के भी कुछ, आरएलडी और राजभर के कुछ जो एमएलए है वो एक्स एसपी है, तो हो सकता है उनपे नजर रखनी चाहिए कि क्या बीजेपी अपना कुनबा बरकरार रखती है आठवीं सीट पे, या तीसरी सीट जो अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नहीं आया, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी चर्चा में है, क्या वो सरप्राइज एंट्री होंगे या फिर वो तीसरी सीट को लेकर के टक्कर होगी।
2: ब्रजभूषण शरण सिंह का तो मैं बता देता हूँ कि बात हुई उनकी एचएम से, होम मिनिस्टर से, और जो हमें इंडिकेशन मिला उनके सोर्सेस के जरिए वही कि वो पार्टी में रहेंगे। देखिए उनका बेटा एक एमपी, एक बेटा उनका एमएलए ऑलरेडी है, उनकी इच्छा है जरूर है कि 2029 का लोकसभा चुनाव में लड़ूं, तो ये पार्टी को तब फैसला करना पड़ेगा। लेकिन अभी राज्यसभा, वो भी तीसरी सीट जिसमें कि मामला फंसा हो, मुझे लगता नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह,
0: उसमें एक डायमेंशन और भी जोड़ दूं, उनकी बेटी है शालिनी सिंह जी, वो शूटर भी हैं, एथलीट भी हैं, वो उन्होंने खुद पूरे नोएडा में अपने पोस्टर सब जगह उन्होंने लगवा दिए हैं कि विधानसभा और वो उभरती सितारा हैं। सडनली मैं देख रहा हूँ कि उनकी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं वो संघ के कार्यक्रम में जा रही हैं, कहीं पुस्तक विमोचन में जा रही हैं, कहीं कहीं जा रही हैं वो। व्हाट आई एम गेटिंग टू हियर इज दैट शी इज पुटिंग प्रेशर ऑन हर फादर। यू सी द सन इज एन एमपी, the other son is an MLA. Shalini's husband comes from a JDU family. उनकी जो संधि हैं, जो वो बिहार से हैं, आरा से एमएलसी रह चुकी हैं, वो एमपी रह चुकी हैं, सो इट्स अ बिग पॉलिटिकल कुनबा, वेयर इन दैट बिग पॉलिटिकल कुनबा द डॉटर ऑफ ब्रजभूषण शरण सिंह इज आल्सो आइंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर हरसेल्फ ऑन द बीजेपी टिकट
1: इन प्लेस ऑफ पंकज सिंह।
0: इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? सो शी इज आइडेंटिफाइड थ्री कंस्टिट्यूएंसीज, इधर जेवर और नोएडा और दादरी। अब इन तीनों में से उनको अगर उनकी लॉटरी अगर लगती है मान लीजिए, तो हो सकता है कि
1: जेवर और नोएडा बोथ हैव ठाकुर एमएलए,
0: वो ठाकुर एमएलए
3: और वो पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं, और जेवर एमएलए धीरेन्द्र सिंह जो है वेरी क्लोज टू योगी जी।
1: या करेक्ट, and in fact interesting story about Dhirendra Singh, he was the one who had taken Rahul Gandhi on a motorcycle when that entire Bhatta Persol agitation had happened. But finally, let's talk about the bipoles that are going to happen in just a few days from now. You would argue it's just a bipole, what's the big deal? But believe me, these are high stakes bipoles. 5 seats: Nandigram, Reji Nagar in West Bengal, Madhurantakam and Dharmapuram in Tamil Nadu, both of them are SC seats, and one seat in Puducherry. The Nagaon Lok Sabha seat will also be voting after the resignation of Pradyut Bordoloi. Now, each seat has its own calculations, but for Shubhendu Adhikari and Joseph Vijay, it will be critical because it will be their first test after sweeping to a massive win. And imagine just how stakes it is, because the Congress candidate was jailed in a case that is almost 20 years old from the Nandigram agitation. He's finally got bail, and here is what he said.
5: চণ্ডীপুরে এসেছি, একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, চণ্ডীপুরে এসে আমাকে বলছে যে আপনি মিলন প্রধান, আমি কেন না চলুন, সিভিল ড্রেসে, সিভিল ড্রেসে এসে আমাকে নিয়ে জোর করে টেনে টেনে নিচে নামালো, নিচে নামিয়ে আমাকে ঘাড় ধরে একদম কোমর ধরে আমার প্যান্টটাও ফেটে এ হয়ে গেছে গাড়িতে তুললো, গাড়িতে তুলে আমাকে চট করে গাড়ি ছেড়ে দিল, মানে দেরি করলো না, ওখানে চোখ বেঁধে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমি জানি না। আপনার কি চাই, কি দাবি দাবা বলুন, আপনি প্রত্যাহার করে নিন।
1: बताइए क्या सर्वे है, कौन सी सीट कौन जीतने वाला है, दो बंगाल की सीटों पर बताइए।
4: देखिए मेरा तो इंटरेस्ट ये है कि जो टीएमसी के दो फाड़ हो चुके हैं, एक टीएमसी ममता और एक डेमोक्रेटिक टीएमसी, इन दोनों में कौन आगे रहता है रेजीनगर सीट पे, वो देखने वाली बात होगी। अदरवाइज तो जो रेजीनगर सीट है वहाँ बीजेपी का जीतना मुश्किल है, वो एक मुस्लिम बहुल सीट है और मुख्य मुकाबला हुमायूं कबीर के बेटे, और उनके साथ किसका मुकाबला होता है ये देखने वाली बात होगी कि टीएमसी के दोनों फैक्शन में से कौन या फिर कांग्रेस। नंदीग्राम जो सीट है मुख्यमंत्री की सीट है, तो वहाँ और जिस तरीके से वहाँ टीएमसी के कैंडिडेट पीछे हट गए, कांग्रेस का कैंडिडेट इतना नया है, बल्कि कांग्रेस पिछले 20-25 सालों से वहाँ नहीं लड़ी है, तो वहाँ पे ज़्यादा कंटेस्ट है नहीं बंगाल में। हाँ, एक यूनिक बात जरूर हुई है कि ममता बनर्जी पहले कांग्रेस को कह रही थी कि हम एक एक सीट अलायंस में लड़ लेते हैं, नंदीग्राम आप लड़ लीजिए, मैं रजीनगर लड़ लेती हूँ, कांग्रेस उसके लिए रेडी नहीं हुई, लेकिन फिर एक स्क्रिप्ट आगे इस तरीके का ट्विस्ट हुआ कि टीएमसी का कैंडिडेट बैठ गया, तो अब टीएमसी वहां पे कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है।
1: और कांग्रेस का सर्वे तमिलनाडु के बारे में क्या है?
4: कांग्रेस का सर्वे तमिलनाडु के बारे में होपफुल यही है कि विजय जो है उनका जो जादू है वो बरकरार है.
0: इनकम्बेंट पार्टी व्हिच इज जस्ट कम टू पावर एंड द स्टार पावर ऑफ विजय ऑफ कोर्स आई मीन द बायपोल बीइंग नेसेसिटेटेड बिकॉज द पर्सन हु वाज हु वन ऑन एआईएडीएमके टिकट हैज स्विच साइड्स तो थोड़ा सा वो फैक्टर है बट आई डोंट सी दैट टू बी अ प्रॉब्लम. इन वेस्ट बंगाल नंदीग्राम आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर फॉर हर व्हाट मिस्टर
1: हसी
0: रानी रात who is the mother of
1: Shivendu Adhikari's personal assistant.
0: On the other seat in Vijayanagar, you know, I mean what, I'm just looking at all the Muslim candidates, Mamta TMC, Rabiul Alam Chaudhary, Rebel TMC, again a Muslim candidate, Congress a Muslim
1: five
0: candidate.
1: Five Muslim candidates and one Hindu from the BJP.
0: So yeah, so you know, I mean, BJP should be sitting comfortably, I feel.
1: BJP sitting comfortable in Vijayanagar? 65% Muslim population.
2: But BJP will manage, I think, because Shivendu Adhikari, you know, his aggressive
0: style.
2: Power.
0: You see, in any bipole, Padmaja, you know, when you're in the state, the scale is always tilted in your favor. And with five Muslim candidates cutting into each other's votes, I think it should be
2: comfortable.
3: The honeymoon
2: पीरियड इज देयर.
3: चुनाव अगर हारती है सत्तारूढ़ पार्टी किसी भी स्टेट में तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा उसके लिए.
1: ओके, हनीमून पीरियड इज स्टिल अप फॉर बोथ ऑफ दीज चीफ मिनिस्टर्स बट द मैसेज दैट यू विल सी कमिंग फ्रॉम दीज बाईपोल रिजल्ट्स एंड फ्रॉम द राज्यसभा रिजल्ट्स. अक्टूबर 6 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रिटिकल डेट बिकॉज द लास्ट डेट ऑफ आई थिंक नॉमिनेशंस फॉर राज्यसभा इज अक्टूबर 6. अक्टूबर 6 इज ऑल्सो गोइंग टू सी अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट बाय द कांग्रेस एंड इंडिया अलायंस एंड इट इज गोइंग टू सी दीज बाईपोल्स हैपनिंग. सो स्टे ट्यून्ड टू NDTV फॉर द वेरी लेटेस्ट. And of course, when that larger political message comes out, you will be right here with us saying, Politics Zindabad. Thanks for watching.

0: courage of Captain Smith Machar and the passengers who intervened to overpower the rogue co-pilot and help save 174 lives.
1: कहेंगे जो फ्लाई दुबई की फ़्लाइट थी, क्या वाकई इसको हाईजैक करने की कोशिश की गई या के मामलात कुछ और ही हैं?
2: ओह, ये भी बड़ा ज़बरदस्त चीज़, एक स्पेशल फिल्म बननी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि जो मौजे हुए हैं इस सारे सो कॉल्ड टेररिस्ट एक्शन में,
1: हाँ जी,
2: तो इस पर तो एक फिल्म तो बनती है और वो शायद कॉमेडी फिल्म होगी मेरे ख्याल में, हैं, क्योंकि वाकई इसमें कॉमेडी ज़्यादा है और थैंक गॉड कि कोई ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई,

लेकिन ये सारी जो जिस तरीके से इसको इसराइल ने पेश किया, इंडिया में पेश किया जा रहा है, वो कॉमेडी ज़्यादा लगती है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े चैनल्स हैं CNN वगैरह, वो भी आप दबे दबे अल्फाज में जो इसराइल की थीरी है

0: Now, cutting across to some more news, former Pakistan High Commissioner to India, Abdul Basit, has sparked outrage with his remarks on the fly Dubai cockpit attack. Basit reportedly described the incident as a so-called terrorist action and said that the episode was good enough for a comedy movie. His remarks appear to belittle the courage of Captain Smith Machar and the passengers who intervened to overpower the rogue co-pilot and help save 174 lives.
1: कहेंगे जो फ्लाई दुबई की फ़्लाइट थी क्या वाकई इसको हाई जैक करने की कोशिश की गई या कि मामलात कुछ और ही हैं?
2: ओह ये भी बड़ा ज़बरदस्त जी एक स्पेशल फिल्म बननी चाहिए मेरे ख्याल में क्योंकि जो मौजे हुए हैं इस सारे सो कॉल्ड टेररिस्ट एक्शन में
1: हाँ जी
2: तो इस पर तो एक फिल्म तो बनती है और वो शायद कॉमेडी फिल्म होगी मेरे ख्याल में हैं क्योंकि वाकई इसमें कॉमेडी ज़्यादा है और थैंक गॉड कि कोई ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई लेकिन ये सारी जो जिस तरीके से इसको इसराइल ने पेश किया इंडिया में पेश किया जा रहा है वो कॉमेडी ज़्यादा लगती है यहाँ तक के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं CNN वगैरह वो भी अब दबे दबे अल्फाज में जो इसराइल की थीरी है और जो इंडिया से बातें हो रही हैं उसको चैलेंज किया जो इसराइल
0: All right, that was the word coming from Pakistan diplomat and he was of course speaking at a public platform. Insensitive remarks at a time when the world has looked with horror what happened in that Fly Dubai cockpit. Let's move on. As investigations dig deeper into the mid-air horror aboard the Tel Aviv-bound Fly Dubai flight, shocking revelations have been made about Israel already having access to the passenger and crew data of the Fly Dubai flight. This has raised new questions about Israel's vetting process and what are the loopholes that the Omani co-pilot exploited. Could the system have prevented this mishap from happening completely? A special report.
3: 29-year-old Omani co-pilot Hammam Al-Hammami

0: Now, cutting across to some more news, former Pakistan High Commissioner to India, Abdul Basif, has sparked outrage with his remarks on the fly Dubai cockpit attack. Basif reportedly described the incident as a so-called terrorist action and said that the episode was good enough for a comedy movie. His remarks appear to belittle the courage of Captain Smith Machar and the passengers who intervened to overpower the rogue co-pilot and help save 174 lives.
1: कहेंगे जो फ्लाई दुबई की फ़्लाइट थी क्या वाकई इसको हाईजैक करने की कोशिश की गई या कि मामलात कुछ और ही हैं?
2: ओह ये भी बड़ा ज़बरदस्त चीज़ एक स्पेशल फिल्म बननी चाहिए मेरे ख्याल में क्योंकि जो मौजे हुए हैं इस सारे सो कॉल्ड टेररिस्ट एक्शन में
1: हाँ जी
2: तो इस पर तो एक फिल्म तो बनती है और वो शायद कॉमेडी फिल्म होगी मेरे ख्याल में हैं क्योंकि वाकई इसमें कॉमेडी ज़्यादा है और थैंक गॉड कि कोई ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई लेकिन ये सारी जो जिस तरीके से इसको इसराइल ने पेश किया इंडिया में पेश किया जा रहा है वो कॉमेडी ज़्यादा लगती है यहाँ तक के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं CNN वगैरह वो भी आप दबे दबे अल्फाज में जो इसराइल की थीरी है और जो इंडिया से बातें हो रही हैं उसको चैलेंज किया जो इसराइल
0: All right, that was the word coming from Pakistan diplomat and he was of course speaking at a public

0: courage of Captain Smith Machar and the passengers who intervened to overpower the rogue co-pilot and help save 174 lives.
1: कहेंगे जो फ्लाई दुबई की फ़्लाइट थी, क्या वाकई इसको हाईजैक करने की कोशिश की गई या के मामलात कुछ और ही हैं?
2: ओह, ये भी बड़ा ज़बरदस्त चीज़, एक इस पर तो फिल्म बननी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि जो मौजे हुए हैं इस सारे सो कॉल्ड टेररिस्ट एक्शन में,
1: हाँ जी,
2: तो इस पर तो एक फिल्म तो बनती है और वो शायद कॉमेडी फिल्म होगी मेरे ख्याल में, हैं, क्योंकि वाकई इसमें कॉमेडी ज़्यादा है और थैंक गॉड कि कोई ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई, लेकिन ये सारी जो जिस तरीके से इसको इसराइल ने पेश किया, इंडिया में पेश किया जा रहा है, वो कॉमेडी ज़्यादा लगती है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े चैनल्स हैं CNN वगैरह, वो भी आप दबे दबे अल्फाज में जो इसराइल की थीरी है और जो इंडिया से बातें हो रही हैं उसको चैलेंज किया, जो इसराइल
0: All right, that was the word coming from Pakistan diplomat, and he was of course speaking at a public platform. Insensitive remarks at a time when the world has looked with horror what happened in that Fly Dubai cockpit. Let's move on. As investigations dig deeper into the mid-air horror aboard the Tel Aviv-bound Fly Dubai flight, shocking revelations have been made about Israel already having access to the passenger and crew data of the Fly Dubai flight. This has raised new questions about Israel's vetting process.

0: Now, cutting across to some more news, former Pakistan High Commissioner to India, Abdul Basif, has sparked outrage with his remarks on the fly Dubai cockpit attack. Basif reportedly described the incident as a so-called terrorist action and said that the episode was good enough for a comedy movie. His remarks appear to belittle the courage of Captain Smith Machar and the passengers who intervened to overpower the rogue co-pilot and help save 174 lives.
1: कहेंगे जो फ्लाई दुबई की फ्लाइट थी क्या वाकई इसको हाईजैक करने की कोशिश की गई या के मामलात कुछ और ही हैं?
2: ओह ये भी बड़ा ज़बरदस्त चीज़ एक स्पेशल फिल्म बननी चाहिए मेरे ख्याल में क्योंकि जो मौजे हुए हैं इस सारे सो कॉल्ड टेररिस्ट एक्शन में
1: हाँ जी
2: तो इस पर तो एक फिल्म तो बनती है और वो शायद कॉमेडी फिल्म होगी मेरे ख्याल में है क्योंकि वाकई इसमें कॉमेडी ज़्यादा है और थैंक गॉड कि कोई ऐसी ट्रेजेडी नहीं हुई लेकिन ये सारी जो जिस तरीके से इसको इसराइल ने पेश किया इंडिया में पेश किया जा रहा है वो कॉमेडी ज़्यादा लगती है यहाँ तक के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं CNN वगैरह वो भी आप दबे दबे अल्फाज में जो इसराइल की थीरी है और जो इंडिया से बातें हो रही हैं उसको चैलेंज किया जो इसराइल
0: Alright, that was the word coming from Pakistan diplomat and he was of course speaking at a public platform. Insensitive remarks at a time when the world has looked with horror what happened in that Fly Dubai cockpit. Let's move on. As investigations dig deeper into the mid-air horror aboard